0: ଈଶ୍ୱର ସାକ୍ଷାତକାର ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କଳା ବା ବିଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ, ଭକ୍ତି ଓ ପବିତ୍ରତା ମାତ୍ର ଦରକାର, କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର, ସମୟ ସକାଳ 6 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମୈଁ ଫରହତ ନାଜ। मंत्रिमंडल ने देश में सेमीकंडक्टर की डिजाइन और निर्माण तंत्र को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
2: सेमीकॉन 2.0, 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमियों की भी क्षमता को मजबूत करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते, सुरक्षा तथा रक्षा साझेदारी और गतिशीलता ढांचे द्वारा समर्थित भागीदारी की मजबूत गति को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ब्रसल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद ये बात कही। भारत और बेल्जियम व्यापार तथा निवेश, हरित ऊर्जा परिवर्तन, नवाचार और प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी, रक्षा सुरक्षा, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में परस्पर आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए हैं। भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद की बैठक ब्रुसेल्स में आयोजित की गई। मध्य प्रदेश से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबुधाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए प्रति उड़ान 15,00,000 रुपए की वित्तीय सहायता देगी। उन्होंने कहा कि पहले किराया लगभग 24,000 से 25,000 रुपए प्रति सीट था, अब ये घटकर 12,000 से 15,000 रुपए हो गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत और विदेशों के प्रमुख कपड़ा निवेशकों और उद्योग प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। श्री यादव भारत मंडपम में मध्य प्रदेश पवेलियन का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। लाल किला परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। अमरीकी सेना ने ईरान पर फिर से हमले शुरू करने की घोषणा की है। अमरीकी सेना की केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान में कई ठिकानों पर रात भर लगातार हमले किए गए। भगवान जगन्नाथ।

0: जगन्नाथ भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आज उड़ीसा के पुरी में शुरू हो रही है। लगभग 3 किलोमीटर की इस यात्रा का समापन श्री गुंडेचा मंदिर में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया है। फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। वहीं अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 25वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिला दी। 90वें मिनट में लुटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी संबलपुर आरंभ करुछु भक्ति संगीतर कार्यक्रम वंदना। आसंतु सुनिबा आज वंदना कार्यक्रम प्रथम अर्घ्य। श्री शंकर प्रसाद दत्तंक कंठरु गीतटी को रचना करिसंती वृंदावन जेना।

जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सर्व पाप हर मुख्य दायक ए पुण्यमय श्रीक्षेत्र अनुष्ठित होता ए पतित पावन रथयात्रार धारा बरणी शुणापी आम राज्यर पुरपल्ली तथा विश्वर कोण अनुकोण से आग्रह सहित अपेक्षा करगणित प्रिय श्रोता बंधु मानू पुणी थे जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। वर्षकर बहु प्रतीक्षित मुहूर्त एवं उपगत हो सबुआड़े उत्कंठा उन्मादना एवं उत्साह भूमि भूमा पर्यंत समस्ते चलचंचल एक अपूर्व उत्सुकता और भक्तिक आवेगरे समस्त दृष्टि निबद्ध नीलकंदर उपरे भक्त दर्शन करिवे महाप्रभु को, महाप्रभु दर्शन करिवे भक्त को। आबाल वृद्ध वनिता आज जे भी महाप्रभुंकर दिव्य लीला दर्शन करने बड़ दंड उपस्थित होती समस्त असामान्य श्रद्धापूर्ण भक्ति भाव विभोर चलबार रहीबार ठेला पेला सहबार पाद छिंडी जीवार वर्षार तिंतार समस्त कष्ट आज तुच्छ हो जाए जीवन रे परम प्राप्तिर बेल जत आगत से कौ कष्ट अटक भक्त को श्रीक्षेत्र तो स्वाभाविक भाव में प्रबल भक्तिमय परिवेश थाए ता सांग को सचराचर विश्व आज भक्तिमय समस्ते जपरि महाप्रभु को धारण करने निज हृदय सिंहासन को सजाइबार लगी महाप्रभु पाखे आम प्रार्थना से विराजंतु प्रत्येक हृदय सिंहासन आउ अल्प समय व्यवधान प्रतीक्षार फल मीठा श्रोता बंधु आम समस्ते से स्वाद पाइबा जानते श्रोता बंधु विगत 452 वर्षर इतिहास रे विभिन्न कारण 32 थर महाप्रभु रथयात्रा हो पारि नाही किंतु 1736 मसीहा परठारु ए पर्यंत ए यात्रा निरवच्छिन्न भावरे चलीछि एपरिक ओडियांक भाग्य केते टाण एवं महाप्रभुंकर केते करुणा देखंतु विश्विक महामारी करोनार कोकुआ भय काल रे भी महाप्रभु रथयात्रा करैले। हाँ श्रोता बंधु आपण को आउ गोटे सूचना देवा चाहिए ताहा हला आकाशवाणी 90 वर्षरे पदार्पण करी आम देशरे उत्सव मनाऊ ए 90 वर्षर महामूल्य उपलब्धि सहित जोड़ी हो जाइए आकाशवाणी कटक पक्षर आरंभ होता रथयात्रार धारा बरणीर 79 वर्ष 1948 रु 2026 79तम वर्ष कड़े अतीत को चाहिए आखि पाऊना भारत स्वाधीन हबार परवर्ष यही धारा बरणी आरंभ होता आम भितर अनेक से जन्म भी हो ना ये आकाशवाणी कटक आउ एक महार्ग उपलब्धि जिते इलेक्ट्रॉनिक माध्यम गणमाध्यम आसतु आकाशवाणी आकाशवाणी तार विकल्प नाही तार भाष्यकार माने विद्वान रुचिशील संयत एवं श्रोतांको पाखरे प्रतिबद्ध इतिहास और शास्त्रर तथ्य महाप्रभुंकर लीला और महिमा ही आकाशवाणी धारा बरणीर आधार श्रोतांकर आकाशवाणी उपरे थिबा अखंड विश्वास आमर समस्त भाष्यकार मानंकु प्रति पदे पदे सतर्क करुछि संयत करुछि।

0: जाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वाराणसी में सड़क संपर्क बेहतर बनाने और भीड़भाड़ तथा यात्रा समय को कम करने के लिए इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल ये जानकारी दी।
3: सेमिकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
2: रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का नया स्वरूप जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि IRCTC ने इसमें 4 बड़े सुधार किए हैं।
4: इन सुधारों में पहला सुधार है कि इसमें कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। IRCTC वेबसाइट पहली बार 2002 में शुरू की गई थी और अभी यह हर दिन औसतन लगभग 14.5 लाख टिकट की बुकिंग संभालती है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब जाएंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए से लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए

0: 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से देश भर में शुरू हो रही है।

0: अंचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगत के नाथ कहे जाने वाले श्री जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का रूप माना जाता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा भव्य रथों पर विराजमान होकर श्री मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित श्री गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। मान्यता है कि ये मंदिर भगवान की मौसी का घर है, जहाँ तीनों देवता 9 दिनों तक विराजमान रहते हैं। इसके बाद बहुदा यात्रा के साथ वे दोबारा मंदिर लौटते हैं। रथ यात्रा की शुरुआत पाहंडी अनुष्ठान से होती है। इसमें मंत्रोच्चार, भजन कीर्तन और पारंपरिक रीति रिवाजों के बीच तीनों विग्रहों को रथों पर विराजमान कराया जाता है। इसके बाद लाखों श्रद्धालु रस्सियों से रथ खींचते हैं, जिसे अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। भगवान के इस नगर भ्रमण को भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देने का प्रतीक माना जाता है।
1: लीला चलवा रे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।
2: ओडिशा के पुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में अपार उत्साह दिखाई दे रहा है।
3: सुबह की पहली किरणों के साथ पुरी का पवित्र बड़दंड जगमगा उठा है और तीर्थयात्रियों के इस शहर में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन अपनी सालाना यात्रा पर श्रीगुंडीचा मंदिर जाएंगे। पुरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव, 3 शानदार ढंग से सजाया गया रथ, नंदी घोष, ताड़ध्वज और देवी दलन पर छेरा पहरा की रस्म निभाएंगे। फिर भक्त जय जगन्नाथ के जयकारों के बीच इन रथों को ग्रांड रोड पर खींचना शुरू करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
2: हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात के अहमदाबाद में भी रथ यात्रा धार्मिक उत्साह के साथ निकाली जा रही है।
4: सज रहा है रथ प्रभु का चंद्रमा सा चेहरा।
5: अहमदाबाद में आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पावन अवसर पर सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी की 149वीं वार्षिक रथ यात्रा धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ निकाली जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जमालपुर स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में सुबह मंगला आरती में भाग लेकर भगवान का आशीर्वाद लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोने के झाड़ू से रथों का मार्ग साफ करने की प्रतीकात्मक रस्म पहिन विधि सम्पन्न कर रथ यात्रा को रवाना किया। रथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: रांची से हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में भी रथ यात्रा को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं।
6: राजधानी रांची के ऐतिहासिक धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर में सुबह से ही अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। दोपहर में विग्रहों के रथारूढ़ होने के बाद शाम 5:01 पर महाप्रभु का रथ मौसीबाड़ी के लिए प्रस्थान करेगा। इधर हजारीबाग में इस्कॉन द्वारा IIT के विशेषज्ञों की मदद से 40 फीट ऊंचे आधुनिक तकनीक वाले रथ पर भगवान विराजमान होंगे, जहां कोलकाता की टीम विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति देगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। केरलम का सबरीमला मंदिर आज से मासिक पूजा के लिए खुलेगा। मंदिर में आज शाम से लेकर 21 जुलाई तक दर्शन किए जा सकेंगे। भीड़ भाड़ से बचने के लिए यह तीर्थयात्रियों को केवल वर्चुअल कतार प्रणाली के माध्यम से ही प्रवेश मिलेगा। मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली उड़ान सेवा को कल झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी।

0: अमरीका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सवेरे एक जोरदार धमाके के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियां प्रभावी कर दी गईं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत सहित इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान के लिए आर्थिक रूप से बहुत प्रमुख खार्ग द्वीप की ओर जा रहे एक खाली तेल टैंकर को रोक दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी अमरीका के साथ बातचीत की कोई योजना नहीं है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं दुर्गा प्रसाद।
1: अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल मुकाबले में अब रविवार देर रात अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 85वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिलवा दी। 90वें मिनट में लोटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलवाई। इससे पहले अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में विश्व कप जीता था। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे से कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंगम में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। श्रृंखला का तीसरा मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान में खेला जाएगा।
0: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उड़ीसा के कुछ स्थानों पर आज अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में, सिक्किम और उत्तराखंड में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है चिप और रिएक्टर के लिए खजाना खोला। नवभारत टाइम्स के अनुसार चिप का हब बनेगा भारत, सेमिकॉन के दूसरे चरण को मिली कैबिनेट की मंजूरी। जनसत्ता की सुर्खी है सेमीकंडक्टर और मोबाइल के लिए 1,90,000 करोड़ की योजनाएं मंजूर। दैनिक जागरण ने आयात घटाने की चुनौती शीर्षक से संपादकीय में दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनेक फैसलों में अधिकांश के केंद्र में देश की आर्थिक स्थिति को बल प्रदान करना रहा है। ये फैसले रेखांकित करते हैं कि सरकार निर्यात बढ़ाना चाहती है, आयात घटाना और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहती है। पंजाब केसरी के अनुसार भारत ब्रिटेन में व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किसानों और एमएसएमई को मिलेगा लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा समझौते से 99% निर्यात शुल्क मुक्त को हो जाएगा। लोकसत्ता के अनुसार यूके की विस्की, कारें और ब्यूटी प्रोडक्ट्स अब भारत में मिलेंगे सस्ते। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लेख देते हुए लिखा है जगन्नाथ है महाप्रभु, उनका प्रसाद महाप्रसाद। जगन्नाथपुरी में पूरे वर्ष भक्त मंदिर में आकर महाप्रभु के दर्शन करते हैं और वर्ष में एक बार महाप्रभु बाहर आते हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है जीन से ग्रीन क्रांति, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को कल हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। हेरिटेज और पर्वतीय रेल मार्गों पर चरणबद्ध रूप से चलेंगी 35 हाइड्रोजन रेलगाड़ियां। अमर उजाला का शीर्षक है अमरीकी हमलों में 7 ईरानी सैनिकों की मौत, 300 से ज्यादा घायल। अमरीका की होर्मोज में सख्त नाकेबंदी, ईरान ने खाड़ी देशों में दागे मिसाइल और ड्रोन। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है एआई की मदद से हरियाणा में मिले 25,666 नए टीबी मरीज, टीबी मुक्त हरियाणा में 100 दिन के दौरान 4,73,000 लोगों की हुई जांच।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमरीका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा। और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରାର ଧାରା ବିବରଣୀର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ।

जय जगन्नाथ। जगतर नाथ प्रभु श्री जगन्नाथंकर रथयात्रा केवल एक पर्व नुहे, बरं एहा होउछि लक्ष लक्ष श्रद्धाळुंकर आस्था विश्वास और भक्तिरे भरा दस दिन व्यापी एक महासमागम। यही पवित्र रथयात्रा अवसर में भक्त मानकर सुस्थता और सुरक्षा निश्चित करिबा आम समस्त दायित्व। से खाद्य निरापत्ता प्रति सचेतन होबा अत्यंत जरूरी। यही समय रे खाद्य निरीक्षक माने निजर कर्तव्य सक्रिय भाव में तुलेबा समय रे आमको मध्य केते गुड़िया दिग प्रति यथेष्ट ध्यान देवाक पड़ो, जमीक तटका खाद्य खातु एवं विशुद्ध पानी जल व्यवहार करूँ। बाहर खोल में बिक्री होता खाद्य, कृत्रिम रंग दिया खाद्य, बासी और दुर्गंध होता खाद्य, माछि बसुवा खाद्य एवं पचासढ़ा फल और पनीपरिया आदौ खातु ना। खाद्य खाइबा पूर्वर एवं पर तथा शौच हवापर निज हाथ को साबुन भल भाव धुंत। शरीर जल शुष्कतारू रक्षा पाइबा आवश्यक स्थले ORS द्रवण पियंतु। सर्वदा पायखाना व्यवहार करूँ एवं परिष्कार परिच्छन्न रुहंतु।

0: सुदर्शन को ही प्रेरण करा जाय थाए जते बेले लखे योजना रे गज डाक देला देवराज ता डाक को चतुर्भुज शुणिल श्रवण डेरी जते बेले शुणिल सेति बेले महाप्रभु गरुड़ पृष्ठरे आसिले गरुड़ पृष्ठरे आसिकरी से कौन कले प्रथमे सुदर्शन चक्र को ही पठेले से ही चक्रपेशी नक्र नासी उधारिले आपण चक्र गला नक्र अर्थात से कुंभीर को हनन कला एवं तापरे पुणी फेरी आसिला एभली जोठी जोठी शत्रु मानू संहार करने महाप्रभु आवश्यकता पड़े से तो बड़े ये तांकर अमोघ अस्त्र भाव से सुदर्शन को व्यवहार करा जाए एवं आज रथ यात्रा रे जत बड़े आवश्यकता पड़ुची अर्थात मु वर्तमान जीवि मोर भक्त मानू उद्धार करी से मत रथारूढ़ हवा को पड़ब पतिजन को उद्धार करने को पड़ब से महाप्रभु प्रथम श्री सुदर्शन को पठाई तांकर अमोघ शक्ति से शक्ति दुर्निवार शक्ति जमती कालर चक्र को कही केवे प्रतिहत करिपारिबोनी कालचक्र अबारित से भली भावरे श्री सुदर्शन गति मध्य अबारित से वर्तमान अबारित गति रे धाई आसिले एवं तांको देखी भय माने समस्ते चली गले जो माने विघ्न करिबा पई आवश्यकता पड़ुथिला आमो टिके कहिदिए जे वर्तमान आमे आखि आगरे देखुचु सिंहद्वारर गुमुट वर्तमान भक्त मानक द्वारा परिपूर्ण होगलाणी एवं चक्र बनाटी बुलुची एवं आलट पड़ुची चामर पड़ुची संकेत दौची जे वर्तमान बड़ बाड़ खाऊंद बड़ देउलर बड़ खाऊंद बलभद्र भगवान से वर्तमान 22 पहाच अतिक्रम करुचंती एवं 22 पहाच अतिक्रम करी धीर मंथर गति रे से बड़दाण्ड आड़े आसुचंती एवं से आसिले ता पछुकु आसिबे देवी सुभद्रामा एवं सभा पछरे आसिबे अखिल ब्रह्मांड नाथ परम कारुणिक श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी होउचंती रथ यात्रार महानायक से आसिले समस्त जनता तांकु दर्शन करिवे तेणु वर्तमान मु परवर्ती धारा विवरणी प्रदान करिबा पई कल्याणी नंदी महोदय को निवेदन कर
1: जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। वर्तमान आम को दृश्यमान हेउछंती 22 पहाच 22 पहाच रे वर्तमान बड़ भाई बलभद्र बलियार भुज वर्तमान आसुछंती पदहुंडन रे मदमत्त मस्तर सेई भाव नै सते जेपरी गोटे उहाड़ भितर मदमत्त है गोटे धड़ा हाथी आसुछंती से 22 पहाच धई आसी थिले सुदर्शन महाप्रभु आसुछंती तांको परे बलियार भुज ए बड़ खाउंद बड़ बाड़र ठाकुर घंट माने किपरि बा बजौछंती घंटुआ दोहली जाउछंती समग्र शरीर चलचंचल हेबा सहित बड़दाण्डर से सिंह द्वार मध्य चलचंचल होइ उठिलेनी आ अपेक्षा करिछंती नृत्यांगना माने नृत्य रे विभोर होइ किपरि जतबेले आसिबे बड़ भाई बलभद्र सेई अरुण स्तंभ निकटकु सेमाने तांकर सेई कलार निपुणताकु से नृत्य माध्यम रे दर्शाई देबे प्रभुंकु तांकर सेई समर्पित भावना।
2: ये मुदिटी भलो लागुची पत्नीकु पसंद आसिबो।
3: हां सर आपनको चॉइस बहुत भलो अछि आ ए डिजाइन भी नुवा
2: डिजाइन नुवा अछि ठीक अछि किंतु सुनार विशुद्धतार प्रमाण केउठी मिलिबो।
3: सचेतन ग्राहक हुवंतु आज ही डाउनलोड करंतु बीआईएस केयर ऐप सुना किनिबा पूर्वरो बीआईएस केयर ऐप रु एचयूआईडी कोड निश्चय जांच करंतु।
4: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित संस्था आरई जथा बैंक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी पेमेंट सिस्टम अंशग्रहणकारी पार्टिसिपेंट्स क्रेडिट इनफॉर्मेशन कंपनी विरुद्ध रे आपणंकर अभियोगर समाधान पई प्रथमे संपृक्त नियंत्रित संस्था निकट रे आपणंकर अभियोग दाखल करंतु एवं रेफरेंस नंबर प्राप्त करंतु।
5: ଯଦି 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସଂସ୍ଥା କୌଣସି ସମାଧାନ ନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ପ୍ରଦତ୍ତ ସମାଧାନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ https://cms.rbi.org.in ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓମ୍ବୁଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ନିକଟରେ କିମ୍ବା crpc@rbi.org.in ରେ ଇମେଲ୍ କରି ଅଥବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ଡ ରିସିପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସିଂ ସେଣ୍ଟର ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭିଷ୍ଟା ସେକ୍ଟର 17 ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼

0: 160017 ठिकणारे डाक द्वारा पठाइ अभियोग दाखल करि परिबे
1: मने रखंतु सीधा सळक भारतीय रिजर्व बैंक रो ओम्बुड्समैन को निकट रे दाखल होइतिबा अभियोग प्रत्यक्षन हेबार संभावना अछि
0: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित रे जारी
2: पवित्र रथयात्रा रे पूर्वतट रेलपथर विनम्र सेवा जारी रहिछि ए वर्ष यात्रीमानक सुविधा पई ओडिसा रे विभिन्न प्रांतरु ओ पडोसी राज्यरु विशेष ट्रेन चलाचलर घोषणा करा जायछि एति सहित अतिरिक्त टिकट विक्रय केन्द्र यात्री सहायता केन्द्र ओ स्टेशन मानकरे यात्रीमानक सुरक्षा पई विशेष व्यवस्था करा जायछि पूर्वतट रेलपथ आपनक सेवारे
3: पवित्र रथयात्रा उपलक्षे सुभद्रा शक्ति बजार आपनकु जणाउछि असुमारी शुभेच्छा एही शुभ अवसर रे सुभद्रा शक्ति बजार रे एसएचजी मा मानक हात तयारी हस्ततंत हस्तकला सामग्री सहित मिलिट्रु प्रस्तुत विभिन्न जैविक सामग्री अपूर्व संभार पवित्र घोषयात्रा उपलक्षे सुभद्रा शक्ति बजार विभिन्न क्रय उपरे स्वतंत्र रिहाती आसंतु आपणंक अपेक्षा रे सुभद्रा शक्ति बजार एसआईआरडी कैंपस यूनिट 8 भुवनेश्वर
4: जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ श्री चोर तुंग श्रृंग बिहरण मातंगी भंगी भृत दुदेवी ततप्ता प्रतप्त मन साम कादम्बिनी कंदल पादम भरु हरुक्त भक्त जनतम कारुण्य पाथो निधि यह स्वयं जगदीशरम वितानुताम श्रेयांसि ब्रूयांसि वह एय आम बड़ दंड बड़ ठाकुरंकर विजयस्थली बलियार भुजंकर सेई बड़ दंडर से सिंह द्वार गुमुट भितर आम देखि पारुछु सेई आसुछंती पहंडी होई हली हली झुली झुली बाईसी पाच दई घंटु आंकर घंट घंटर से नादर ताले ताले हरिबोल कुलहुली रे गगन पवन प्रकंपित होई उठुछंती आदि द्वादश जात्रार श्रेष्ठ जात्रा रथ जात्रा अनुष्ठित होउछंती जहांको की बार मासरे तेरो जात्रा लगाई अछंती जगतर नाथ पतित जनक उद्धार निमन्ते नाना उत्सव नीलासी एला भितरे श्रीलगिरी शिखरे हरि द्वादश जात्रा विनोदे स्नान गुंडीचा अयन शयन पारस पालट मोदे देव उत्थापन मकर ओढ़ण दोल दमनक चरी चंदन चंपक उत्सव सहित ए विधि लीला विस्तारी ए विधि लीला को अनुष्ठित करी बलियार भुज आज आसुछंती घंटुआ मानंकर उद्घोषण रे अपेक्षा करिछंती अरुण स्तंभ निकटरे अनेक श्रद्धालु नृत्यांगना माने अपेक्षा करिछंती मठर मठाधीश माने आलोड चालुछि चामर चालुछि हुळहुळी रे समस्त भक्त मानंकर स्वर एक स्वर रे उच्च स्वर रे उच्चारित हेउछंती हरिबल हुळहुळी सहित आउ आमे देखि पारुछु वर्षा टिकिए टिकिए हेले मध्य भूर्क्षेप नाही वर्षा को कहीं ना भगवान को सहित भक्तर मिलनर यात्रा एक वर्ष पर प्रभु आसी सिंह द्वार से गुमुट दे रथारूढ़ हे एवं चलीजे से कर्म भूमि जन्म बेदी को जोठी माँ अपेक्षा करी रानी गुंडीचा कथा दे आसबि निश्चय आसबि बर दे माता सी से जननी जन्म भूमि स्वर्गदपी गरी असी प्रभु आपणार करे बंधु मानू आज क्रम नय आसी आम देखुचु नीला जो निया हुड़ा बनाटी चली प्रस्तुत होती जड़े सेवक तार जो हुड़ा बनाटी मध्यम निआ को संजोग कर प्रभु निकटने पूरीर उत्कलीय समर कलार निखुण दर्शन प्रदर्शित करे प्रभु निकटने कारण जितेबले विभिन्न समय उत्कल को मोगल मानक विदेशी मानक आक्रमण होता से समय छाउणी मठ जहाँ समर कलारे पूरापल्लीर श्रीक्षेत्र जुव भेंडिया मानक जो समर कलार शिक्षा देते जहाँफल जगन्नाथ को विदेशी आक्रमण रक्षा करा से कालिया ठाकुर से बलिया ठाकुर आज साम्य मैत्री प्रीतिर बार्ता नहीं भक्त सहित भगवान मिलनर जात्रा भाव भक्तिर जात्रा रे आज छुट्टी आसुछंती बड़ दांडर अपेक्षा करथिबा से नंदी घस ताल ध्वज दर्प दलन तीन गोटे रथरे रथारूढ़ एवं सेवक माने टाणी ने आम देखी किसी समय पूर्व श्रोता बंधु खाली रथ को प्रतिष्ठा करा जाए नथिला रथ उपरे पानी सिंचन करा जाए नथिला प्रतिष्ठार जल को आम देखी राधावल्ली मठर से आकाशवाणी केन्द्र जो करा जाए जे जो

0: काउंटर्स एवं प्रोसेसिंग एरिया एसबु को ठीक भाबरे नियंत्रण करबा पई डाकघर रप्तानी केंद्र को आसंतु।
1: समस्त डाकघर रप्तानी केंद्र रे पार्सल पैकिंग यूनिट गुड़ी करो प्रोविजन अछे जेउथरे पैकेज फैसिलिटी मध्ये उपलब्ध।
0: खाली सेति कि नहि एक्जिटिंग बल्क कस्टमर्स का पई प्रोविजन अनुसार टिकस फैसिलिटी प्रदान करा जाउची।
1: डाकघर रप्तानी केंद्र डीएनके एबे आपणक सेवारे।
2: वर्तमान राज्य रे ममता ओ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मिलित भावरे कार्यकारी करूअछि।
3: एही योजना अधीन रे कन्या संतान जन्म करूथिबा महिलांकु उत्साहित करबा पई पूर्वरु दिया जाउथिबा सहायता राशि 10,000 टंका परिवर्ते 12,000 टंका प्रदान करबा पई सरकार घोषणा करिछंती। एही अर्थराशिकु हिताधिकारी माने निजे ओ शिशुर स्वास्थ्य एवं पुष्टिर उन्नति निमन्ते विनियोग करिथांती। सरकारक निष्पत्ति अनुजाई वर्धित सुविधा 1 एप्रिल 2025 रु लागू करा जायछि।
2: एही योजना अधीनरे मिलुथबा सुविधा गुडी कहेउछि कन्या संतान जन्म क्षेत्र रे हिताधिकारी माने प्रथम एवं द्वितीय गर्भधारण पई 12,000 टंका पाइबे।
3: पुत्र संतान जन्म क्षेत्र रे हिताधिकारी माने प्रथम एवं द्वितीय गर्भधारण पई 10,000 टंका पाइबे।
2: विशेष भाबे अनुन्नत जनजाति समुदाय संप्रदायर महिला मानंकु तृतीय एवं परवर्ती जे कोनोसी गर्भधारण पई कन्या संतान क्षेत्र रे 12,000 टंका एवं पुत्र संतान जन्म क्षेत्र रे 10,000 टंका प्रदान करा जिवार व्यवस्था करा जायछि।
3: एही योजना विषय रे अधिक सूचना पाइबा पई आपनको निकटस्थ अंगनवाड़ी केंद्र रे जोगाजोग करंतु।
2: अधिक सूचना जानिबा पई महिला ओ शिशु विकास विभाग रो वेबसाइट wcd.odisha.gov.in रे लॉगिन करंतु। महिला ओ शिशु विकास विभाग द्वारा जनहित रे जारी।
4: पवित्र रथयात्रा रे पूर्वतट रेलपथर विनम्र सेवा जारी रहिछि। ए वर्ष यात्रीमानंक सुविधा पई ओडिसा रे विभिन्न प्रांतरु ओ पड़ोसी राज्यरु विशेष ट्रेन चलाचलर घोषणा करा जायछि। एथि सहित अतिरिक्त टिकट विक्रय केंद्र यात्री सहायता केंद्र ओ स्टेशन मानंक यात्री मानंक सुरक्षा पई विशेष व्यवस्था करा जायछि। पूर्वतट रेलपथ आपनंक सेवा रे।
5: आगे बीजे काम पालो महामंगल सकाळ दईतापति संकुळ घेनी पाखरे केऊ माने चरण रे केऊ शिवज बल रे के डोर धरिया गरे अतिशय रे विजय करांति हळिंकु धीरे धीरे नहीं जानती ताल ध्वज को। वर्तमान आम देखिपु आउ मात्र जो तालध्वज रथर सिंहासन रे महाप्रभु श्री बलियार भुज बड़ ठाकुर बलभद्र भगवान विजय करिवे से आउ अल्प मात्र आउ विचारी हाते मात्र रही। किंतु एपटे आम देखुचे जगत जननी करुणामयी घट घट बासिनी उद्भव स्थिति संहार कारिणी परम कल्याणमयी परम्बा जगदम्बा जगत जननी माँ माँ माँ सुभद्रा वर्तमान विजय करुछंती। से जो तांकर प्रिय दईता सेवक मानकर स्कंधावलंबन पूर्वक से धीरे धीरे धीरे धीरे पहंडीरे आगे आगे जाउछंती। जेमिति बलभद्र एवं श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पहंडी हुए पाउंड परे पाउंड पकाई आसंती तांकर पहंडी से भले हुए नाही। से होचंती जगतर माता से होचंती जगत जननी करुणामयी समस्तंकु कृपा दृष्टि रे देखि उद्धार करिबा मा थिए। तेणु माँ को जेमिति भावरे सम्मान दवा कथा तांकर संतान हिसाबरे एही सेवक माने तांकु सम्मान दउचंती। माँ जेतेबेले आसंती से केतेबेले तळकु मुह करी आसिबे नाही किंबा पादरे चाली चाली आसिबे नै ये दिनटा जिनिस ताको पाखरे आमे देखिबा नाही। माँ जेतेबेले आसंती दर्प दलन रथकु समस्तंक दर्पकु दलन करूथिबारु से रथर नाम हेछि दर्प दलन। तेणु आज समस्तंक दर्पकु दलन करिबा माँ मध्य से जा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। माँ समस्त शक्तिर आधार से तेणु सी होती जगतर शक्ति। तेणु सम जहाँ जो जाऊ शक्ति बिना मनीष गोटे पाद मध्य आग को अग्रसर हो पारना से ही परम शक्तिमयी जगत जननी सर्वाग हारिणी जगत जननी माँ सुभद्रिका से वर्तमान जाऊँच दर्प दलन रथ को वर्तमान से

0: कहन्ति पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। महाप्रभु होचन्ति संपूर्ण पूर्णावयव एवं पूर्ण ब्रह्म। से जोठि रहिबे से स्थान हेइजिव पूर्ण, जोठि से स्थान छाड़िबे से स्थान हेइजिव शून्य। आज बड़ देउळ हेलाणी शून्य, बड़ देउळ रे आज माँ चाहिथिले खाइयाकु देइथिले एवं खाइबाकु देइ सारला परे कौन हैला के जानी आज प्रभु उठिकरी भाई भौणी को संगरे नहीं ताकु पदेवी किसी कुआ बोला नहीं कह न कही सेवक मानक सेवक मानक सहायता रे आज रथ चढ़ीकरी पलाऊ घंट बाजिला।
1: एटा गोटे कथा आपन को कहवाक चाहिए जे से तांको पदे कहिले नहीं से तांको साथीरे नेले नहीं तथापि मध्य माँ लक्ष्मी खेचुड़ी रांधिकरी तांको देले
0: देले।
1: ये होचे आमर भारतीय नारी,
0: ये होचे आमर भारतीय नारी।
1: नारीर जो आदर्श नारीर जो परंपरा एवं तार मनोभाव जे से मत न पचारंतु से न कहंतु से जानतु किंतु मोर कर्तव्य तो मु करबी। सी जिते जाऊँगी मत रागिकी न चाहक पलैले गोटे स्त्रीर कर्तव्य हूँ स्वामीटा कौन खाली पेटर घर जीव तेणु स्वामी को मुझे देवी खाद्य से खाई जातु दस दिन बार दिन पर आसवे कड़े जी मो पा तो आसवे तेणु ये विचार यहाँ हूँ भारतीय हिंदू भारतीय समाज में जो दाम्पत्य जीवन महिमा ये महिमाटी महालक्ष्मी ये जो खेचुड़ी महाप्रभु को देकर विदा करवा महाप्रभु न कही सत्वे महाप्रभु ताकि कौन से सूचना दे ना सत्वे एवं निज भौणी को धरिकी चली जाऊ सत्वे माँ लक्ष्मी तांको कर्तव्य में कौन से अवहेला न करी गोटे स्त्रीर जहाँ कर्तव्य भारतीय नारीर कर्तव्य से कर्तव्य संपादन करिसंती तेणु एटा आम भारतीय नारी मान प्रति कम बड़ वार्ता नुहे।
0: भारतीय नारी मैंने महालक्ष्मी को अनुसरण करवा उचित। महालक्ष्मी किभली भाव में गोटे ये भी तांकर औदार्य लीला से किभली भाव स्वामी प्रति एकनिष्ठ एकनिष्ठ अटंती तार मध्य चरम निदर्शन आज देखा मिलला। जहाँ कहले जे वर्तमान महाप्रभु ताकु पचारंतु न पचारंतु से मोर प्राणनाथ से मोर प्राण प्रिय तांको व्यतीत मोर अन्य केही नाही। महाप्रभु एठारे नरलीला करुछंती भगवान कर देहटी होची भगवान कर देहटी होची दारू किंतु ताकर लीला गुड़िक

बजे मस्तक सोहे हीरा, मंदिर आगे दासी नाचे कहे दास कबीरा। मंदिर आगरे दासी नाचुछंती, ये दासी जो गोपी गोपांगन माने आज नृत्य करुछंती। आज सत जेपरे प्रतिमान होउछि ए द्वापर युगर से जमुना कूल रे आज प्रभु रास उत्सव अनुष्ठित करुछंती। टिके पूर्वर आपण डॉक्टर नरेश दास महोदय कहुथिले जे गुंडीजा मंडप को जाउछंती प्रभु, सेठी तीन दिन रास उत्सव चलिबो, सप्तमी अष्टमी एवं नवमी, किंतु खाली सेते के आज जेपरी मन हो कौन प्रभु से कालिंदी कुलिया जमुना कुलिया ए जमुना कूल पाखे गोपी गोपांगन संगरे नृत्य करुछंती कि मने पड़ुछि से शंकराचार्य गीत जहाँ को ओडिया रे आमे मध्य अनुवाद करियोचु काले।

0: सरकार आनिछंती पीएम राहत योजना
1: जेउठी अनुबंधित घरे डाक्टरखाने रे 7 दिन जाय 1.5 लाख टंका पर्यंत रो चिकित्सा खर्च सरकार वहन करंती
0: ओडिसा रो 798 घरे डाक्टरखाना एही योजना रे पंजीकृत होइछंती
1: सेही भली समस्त सरकारी डाक्टरखाने रे सड़क दुर्घटनाग्रस्त को चिकित्सा संपूर्ण मागणा
0: आसंतु मानवीकता रो एही संकल्प रे सहभागी होई आमे भी बढाईबा सड़क दुर्घटनाग्रस्त को सहायता राहत
1: पवित्र घोष यात्रा रो हार्दिक शुभेच्छा
0: राज्य परिवहन प्राधिकरण ओडिसा द्वारा जनहित रे जारी
2: जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ आज समस्ते चिंतार पड़े जेहेतु महाप्रभु वर्तमान गुमुट मध्य विजय करईठी अटक रही जा घंट घंटुआ मान घंट बजाऊ बेले बेले से घंट को बंद करदे कारण आ घंट बजेबार भी शक्ति सामर्थ्य से मानकर नहीं कारण महाप्रभु जिते एत विलंब कले किए से पटुआर घंट बजेब तेणु से मैंने बहुत चिंतार पड़ती आम मैंने समस्ते चिंतार पड़चु एवं समस्ते गोटे मात्र आशा कर भगवान पाखे डाकरा दौंट कौन कालिया कान्हू आउ विलंब कर कहीं बरस के थरे विजय रथरे पतित तारीबा पाई की कालिया कान्हू आउ विलंब कर कहीं कालिया कान्हू आउ विलंब कर कहीं 14 ब्रह्मांड रुंड होई दर्शन करीबा पाई की 14 ब्रह्मांड रुंड होई दर्शन करीबा पाई की देवदासी नाच उकुट करंती दाता धीमी किटी थेकी कालिया कान्हू आउ विलंब कर कहीं गुमुटरे रही गल की कालिया कान्हू आउ विलंब कर कहीं बरस कथरे विजय रथरे बरस के थरे विजय रथरे पतित तारीबा पाई के कालिया कान्हू आउ विलंब कर कहीं कालिया कान्हू आउ विलंब कर
3: टाहिया मध्य नहीं आज प्रभु टाहिया को मध्य मस्तकर तांकर ओलारी हे जाइछंती काही के कहि जानी आज प्रभु की मान मारिछंती जे मान उदाहरण कर हे तारण से प्रभु काही के आज आपणकर एभले रूप काही की प्रभु देखा आपणकर सही रूप जो रूप देखिबा पई एटी भक्त माने आसीछंती आपणकर रूप लावण्य रे पटांतर नहीं चका चका आखी
2: मोते से ही रूप देखा हरी मोते से ही रूप देखा हरी जय श्री राधे बोली डाके बांसुरी मोते से ही रूप देखा हरी मोते से ही रूप देखा हरी सिंहद्वार ठारू वर्तमान बड़दाण्ड रे जेते दूर पर्यंत आम आखि पाउची आमे देखिबा को पाउचु समस्ते सतृष्ण नयन रे चाहिचंती वर्तमान समस्तंकर धैर्यर बंध मध्य धीरे धीरे भांगिबा को जाउची हे महाप्रभु आपण जदि परीक्षा नेबे आपण जदि परीक्षक हेबे आपणक पाखरे किए परीक्षा दबो प्रभु तेणु ये भक्त मानू आउ कष्ट दिंतु ना आपण पूरा कही रथे तु बामनम दृष्टा पुनर्जन्म नभिद्यते रथ उपरे बामन रूपी मोते दर्शन कले आउ पुनर्जन्म हम नाई।

0: शोभनीय नुहे। महाप्रभु यही भाई श्रीमुख को भक्त मान को दर्शन करने को बोध हुए चाहूना तेणु से कौन ये घटना पुंखानुपुंख आलोचना करा जीवो वर्तमान महाप्रभु सब सब समस्त सब आशंका को दूरीभूत करी से वर्तमान अग्रसर हेलेनी एवं ताक अग्रभाग रे जो सेवक माने थिले से मध्यम बहुत आग को चली गलेनी एवं पछरे पृष्ठ भाग रे मध्य आज छत्र आड़ेणी इत्यादि सब रही पाग बड़ प्रतिकूल अच्छी कारण महाप्रभु किंतु वर्षा पुणी वर्तमान आरंभ हो जा वर्षा बोध हुए कौन सी केतबले भी माने स्थगित होनी बंद होनी तेणु वर्षा चली जहाँ शांतनु बाबू कहते प्रभु इच्छा तेणु प्रभु इच्छा तो सृष्टि आतजात होेणु आम वर्तमान देखुचु श्री बलभद्रंकर रथरे बड़ ठाकुर रुंधा सरलेनी एवं देवी सुभद्रांक रथरे माँ मध्य रुंधा सरलेनी आउ वर्तमान केवल अपेक्षा श्री जगन्नाथ महाप्रभु नंदीघोष रथ को उठिबे एवं नंदीघोष रथर चारमाळ पार्श्वर्ती से होउचंती एवं तांकर तो आज सबुठारु मन दुख होउची आपण मानकर मन दुख आम मानकर मन दुख कारण भगवान ये भली श्रीमस्तक चाहिया न थाई से केवे बाहर को बाहरती ना जोबले महाप्रभु विजय हम से चाहिया निश्चय लगे तार कारण हूँ ये आज परंपरा नुहे रघु अरक्षित देखा प्रतिश्रुति आज प्रतिफलित होणु ये भाव में महाप्रभु आसते टीवी चैनल रे तांकर ये रूप को कोटि कोटि जनता दर्शन करुछंती या मु भावुची जदि एमती किसी हेथिबो निश्चित निश्चित भाव अक्षमणीय अपराध कारण ये अपराध साक्षात जगन्नाथ महाप्रभु सहित ही तेणु एवे मु देखुची प्रति वर्ष कौन ना कौन गोटे गोटे अघटन घटा जाऊँगी आम तो भावुलु ए जातीय अघटन केबे घटिबो नाही कारण ये तो गोटे टाहियार कथा टाइयाटा केमिति भांगी जीवो काहे कोन पे भांगी जीवो
1: डॉक्टर दास या ऊपर आउ बेसी चर्चा करबा नै आमे महाप्रभुंकर महिमा महाप्रभु
0: तेनु महिमा महिमा कहिले न नतास्य कश्चित पतिरस्ति लोके न चे सीता मई वच तस्य लिंगम सकारणम कारणाधिपाधिपो नतस्य कश्चित जनिता नचाधिप ए महाप्रभु को ऊपर आउ के अछि लेखाई शास्त्र रे न चाष्य कश्चित पतिरस्ति लोके ये ले जगतपति ये जगतपति को ऊपर आउ जने पति किए अच्छी ये कथा कही विश्वास करवा उचित नुहे कारण ये होती जगतपति न चाष्य कश्चित पतिरस्ति लोके
2: ये मुझे टी भलो लगुची पत्नी को पसंद आसीबो
3: हां सर आपण को चॉइस बहुत भलो अछि आउ डिजाइन भी नुवा
2: डिजाइन नुवा अछि ठीक अछि किंतु सुनार विशुद्धता रा प्रमाण के उठि मिलिबो
3: सचेतन ग्राहक हुवंतु आज ही डाउनलोड करंतु बीआईएस केयर ऐप सुना किनिबा पूर्वरो बीआईएस केयर ऐप रु एचयूआईडी कोड निश्चय जांच करंतु
4: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित संस्था आरई जथा बैंक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी पेमेंट सिस्टम अंशग्रहणकारी पार्टिसिपेंट्स क्रेडिट इनफॉरमेशन कंपनी विरुद्ध रे आपणंकर अभियोग रे समाधान पई प्रथमे संपृक्त नियंत्रित संस्था निकट रे आपणंकर अभियोग दाखल करंतु एवं रेफरेंस नंबर प्राप्त करंतु
5: जदि 30 दिन मध्यरे संपृक्त नियंत्रित संस्था कोनोसे समाधान न करंती किंबा आपण प्रदत्त समाधान रे संतुष्ट नहुंती तेबे आपण https://cms.rbi.org.in रे लॉगिन करी रिजर्व बैंक ओम्बुड्समन को निकटरे किंबा crpc@rbi.org.in रे ईमेल करी अथवा सेंट्रलाइज्ड रिसीप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल विस्टा सेक्टर 17 चंडीगढ़ 16001 7 ठिकाना रे डाको द्वारा पठाई अभियोग दाखल करि परिबे
4: मन रखंतु सीधा सड़क भारतीय रिजर्व बैंक रो ओम्बुड्समन को निकटरे दाखल होइतिबा अभियोग प्रत्यक्षन हेबार संभावना अछि
5: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित रे जारी
6: पवित्र रथ यात्रा रे पूर्वतट रेलपथर विनम्र सेवा जारी रहिछि ए वर्ष यात्री मानक सुविधा

0: हस्ततन्त ओ हस्तकला सामग्री सहित मिलेट्रु प्रस्तुत विभिन्न जैविक सामग्रीर अपूर्व सम्भार पवित्र घोष यात्रा उपलक्षे सुभद्रा शक्ति बजारे विभिन्न क्रय उपरे स्वतंत्र रिहाती आसन्तु आपणंक अपेक्षारे सुभद्रा शक्ति बजार एसआईआरडी कैंपस यूनिट 8 भुवनेश्वर।
1: जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। तेणु ईश्वर दास सप्तदश शताब्दीर कवि कौन कहते महाप्रभु संपर्क में सुजने चिंत नीलगिरी बुद्ध स्वरूप देव हरि सबु रूपर अटे सार ये रूप सर्व अवतार महाशून्य जे शून्य स्थूल शून्य अरूप अमूल्य अवर्ण। तेणु ये जो महाप्रभु संपर्क में कहगला ये समस्त अवतार मानक ये हूँ स्थूल रूप सबु अवतार याखु जन्म होती। तेणु जेतेबेले मानव कथा उठुची यही मानव मानू जानवापी मनुष्य को जानवापी महाप्रभु स्वयं मानुषी लीला महाप्रभु तो निर्गुण तांकर कौन सी गुण ना तेणु से गुणभुक्त हेले जाकर ईश्वर हमती सृष्टि रचना करती से महाप्रभु यो मनीष मानक आप विज्ञापन शुणुते ये रथजात्रा केवल सामान्य रथजात्रा नुहे मानने वाणिज्यिक विज्ञापन महाप्रभु महिमा घोषणा कर सेमाने कहते जे रथजात्रा गोटे साधारण रथजात्रा नुहे या मानवर जयजात्रा ये महामानविकतार गोटे प्रदर्शन क्षेत्र। तेणु महाप्रभु से मनीष मानक चिन्हवापी से मनीष मानक अधिक बुझापाई महाप्रभु स्वयं मानुषी लीलार आसी से महाप्रभुंर जिते कष्ट महाप्रभुंर जिते आवेग महाप्रभुंर जिते उच्छ्वास मानवपाई अच्छी से सबू उच्छ्वास को पुंजीक महाप्रभु आज बड़दाण्डे विराजमान करमाड़े महाप्रभु ठिया आमर जिते कर्मचारी आमर आकाशवाणी धारा बरणी केन्द्र अच्छा महाप्रभु जिते चारमाड़े चारमाड़ पाखे ठिया महाप्रभु जिते आम राधावल्लभ मठ उपर ठिया महाप्रभु को प्रत्यक्ष भाव में सामना सामने देखुलु समस्ते कि समय पर निजर प्रत्यक्ष कर्म एवं निजर दायित्व को भूली जाकर महाप्रभुंर आखि सहित आखि मिलाऊ समस्त आखि छल छल हो उठुला यहीपाई तो महाप्रभुंर अनन्यता यहीपाई तो रथजात्रार अनन्यता यहीपाई महाप्रभु को बड़दाण्डे आम लोड़ू जे महाप्रभु सहित आम आखि मिलईदेबू कारण जगमोहन भितर गरुड़ खम्ब पछरे ठिया महाप्रभु को एत सुंदर भाव में देखार सुजोग आमको मिलूना आजिकाली दर्शन व्यवस्था एत जटिल एत कष्टप्रद हो जगमोहन भितर महाप्रभु को टी भल भाव आखि पूरेक देखा मन पूरेक देखा ये सुविधा बर्तमान मिलूना तेणु बड़दाण्डे जोबले महाप्रभु को चाह महाप्रभु आम को चाहते आम महाप्रभु को चाहू यही प्रकार गोटे परेश महाप्रभु सृष्टि करते परेश हाथ चढ़ा करने को चाहूना समस्त जोड़ हस्त समस्त आखि महाप्रभुंर आखि सहित मिशुची समस्त आखि लुह छल छल कहीं एक घटे बड़दाण्डे कहीं एक महाप्रभु समस्त आखि को लोतकार्द कर दिंती कारण आत्मा सहित आत्मार मिलन हो जाए एवं महाप्रभु होंगे परमात्मा आम समस्त आत्मा आत्मा जी परमात्मा सीए जी जगत में व्यापिक रही सी परमात्मा जी आम अंतर भितर अच्छा सी आत्मा आत्मा एवं परमात्मा भितर कौन से अंतर ना तेणु आत्मा जिते परमात्मा को देखुची एवं परमात्मा जिते आत्मा को देखुंट उभय मिलन मुहूर्त में उभयर आखि छल छल हो जाए महाप्रभुंर आखि छल छल हो ना ताम आखिरे पड़ूना किंतु आम आखि छल छल हो कथा महाप्रभु निश्चय देखुं तेणु यही आखि छल छल परेश आखि छल छल मुहूर्त केवल बड़दाण्डे रथजात्रा हुए बोली आम रथजात्रा को धाई आसू एवं रथजात्रा को प्राणर सहित अनुभव करने उपलब्ध करने आम अपेक्षा कर रखी था से महाप्रभु जिते गुमुटे देढ़ घंटा काल अटकी गले से ही समस्त मन भितर उत्कंठा बलीगला समस्त मन भितर हाहाकार बलीगला सारा राज्य रे जेतेबेले आकाशवाणी माध्यम रे दूरदर्शन माध्यम रे कि अन्य कौनसी माध्यम रे लोक माने विवरणी सुनुथिबे समस्त मन भितर हसा हसा नैराश्य करथियो आहा आमर महाप्रभु केते कष्ट पाइले यात्री माने श्रद्धालु माने भक्त माने बड़दाण्डे अपेक्षा करिसेंति महाप्रभु देखा पाई अपेक्षा करिसेंति किंतु कौन घटिला जे महाप्रभु आसी नाहंती महाप्रभु गुमुटरे बसी रहिसेंती ताहिया तांक मस्तक रे नाही किड़े सुंदर दिशुथांते महाप्रभु किड़े शोभाजुक्त होता तांक रूप से रूप आम दर्शन कर पारिलु नाही महाप्रभुंर जी दुख नुहे भक्त मानकर ततोधिक दुख इटा हला आज तेणु सेइति पई आमे समस्त मर्माहत।

0: ये जदि रुसिलानी सीए मन उणा कलानी सीए मध्य कहूँ मते अणदेखा करा जाउछि विभिन्न प्रकार समस्या भितरे परिवार पुणी आगो को चालुछि आउ ये जो महाप्रभुंकर परिवार ये जो बड़ ठाकुरंकर ये जो बड़ व्यवस्था ये श्रीमंदिर व्यवस्था सर्वम रहस्य पुरुषोत्तमस्य सेति पाई कुआ जाए देवान देवो न जानाति कुतः मनुष्य मनीष जानी पारिबनी वास्तवरे केमिति संपन्न होउची ये लीला किए आनी कौन जोगे देउची किए वाद्य बजाउची किए तुलसी आनी देउचंती किए धूप दीप लगे प्रस्तुत अच्छा एत बड़ वर्षा आज सका लगि रही महाप्रभुंकर नीति यथापूर्वम से हीपरी चली रही कौन सी उणा ना मनीष भक्त मानकर सचराचर ब्रह्मांडर छपन कोटी जीवजंतु समस्ते अवलोकन करुंती ये दिव्य लीला को से पूरा स्वयं लीलें आसी जो दुईटी जात्रा को छाड़देले आउ जो जात्रा गुड़िक रही दसटी जात्रा गोटी उपजात्रा एगारटी जात्रा से महाप्रभु चलती विग्रह श्री श्री मदन मोहन रामकृष्ण को पठाती किंतु एकमात्र दुईटी जात्रा से रखिंट स्वयं लीलें आसवे स्नान बेदी को तो से मंदिर भितर आसी पुणी पलै जाऊ मात्र रथजात्रा रे एक अवकाश रही था भक्त पाखरे से मन भरी तार प्राणप्रिय ठाकुर को भावरे बांधि पारिब से तो भकत भावरे बंधारे से तो भकत जीवन धन से भकतर जीवन धन जे प्राण स्वरूप जे घरे बसी अपेक्षा करी जगन्नाथ।
1: श्रीक्षेत्र पुरीठारे अनुष्ठित महाप्रभु श्रीजगन्नाथंक विश्वप्रसिद्ध रथजात्रार धारा बरणी शुणुले रिले कोलु आकाशवाणी कटक केन्द्र यार धारा बरणी पुणे शुणीपारे दिन 2:15 रिले करू आकाशवाणी कटक केन्द्र आकाशवाणी संबलपुर ओडिया संवाद रिले करछु आकाशवाणी कटक केन्द्र परे इंग्राजी संवाद रिले करू आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र।

0: जीवा एमती भाव भक्ति कथा गाथा को नहीं दासिया बालिका दासिया पीठ रू तो मालचूल आसी तीन प्रभु निकट को किंतु आम अणरे अच्छा डक्टर चित्तरंजन साहाणी जे प्रतिवर्ष आसती आपण पाखे भाव अनुभव कथा चिंता चेतनार कथा को व्यक्त करवण करवा बर्तमान आम निकट आम चित्तरंजन साहाणी अच्छा जहाँ को नरेश दास महोदय शांतनु रथ महोदय किसी भाव अनुभूति कथा पचारे सुंदर भाव में सी आमको कहे
1: जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ महाप्रभु अपूर्व नवदिनात्मक यात्रा कालिया सांते आज गोटे बढ़िया कथा देते कथा रखिले ये द्वापर युगरे गोपी गोपांगण मान को कही आत्मा मान को कही प्रभु युग सरुचि मु कुआडे जीवी तमे कुआडे जीव देखा केमिति हेब कालिया कही मने रख उत्कल भूखंड श्रीमंदिर मु जगन्नाथ होकर रही जगन्नाथ है सोल कला तहु कला है नंदमला ये कालिया सांत आज बड़ भाई बड़बार बणिमा हरिद्रा बणिमा सुभद्रिका चक्राज सुदर्शन महामाई लक्ष्मी सहित विराजमान करुँच भक्त मान को दर्शन करवाक आसी ये कुंडा कुंडीर ठाकुर ये आसी भक्त मान सहित एकाकार हाबापी आप देखुवे आप अनुभव कर आकाशवाणी द्वारा जे एमती वर्षा होे वर्षा साधारण जल नुहे ये हूँ अमृतर बारी धारा ये पुष्प वर्षा हो पुष्प बारी होता आम से महाप्रभु पाखे नाची नाची आसुलु जितेबले आम नाचुल कहूल प्रभु ये वर्षा टी कम दिंत नहीं सी कहते ना ना तु मो प्रेम तोते गाधेई देवी मु रत्न सिंहासन थिला बेले तु मते केते अली अली कहिचु प्रभु देखा दियो गोटिए पानी रे आमे गाधेइबा गोटिए पुष्करणी ए बड़दाण्ड पुष्करणी हौ ए बड़दाण्ड गोटिए जलाशय हौ ए बड़दाण्ड गोटिए तरणी हौ आमे सेइटी गाधेइबा
2: डाकघर माध्यम रे कमर्शियल एक्सपोर्ट पई स्वतंत्र भाबे बछा जाइथिबा डाकघर होउछि डाकघर रप्तानी केन्द्र बा डीएनके वर्तमान ओडिशार प्रत्येक जिले में समुदाय 35 डाकघर रप्तानी केन्द्र उपलब्ध अछि
3: कस्टम डॉक्यूमेंटेशन करिबा आमदानी रप्तानी कोड आईएससी जेनरेट करिबा एवं रप्तानी डाक बिल पूरण करिबा स्थानीय उत्पादक क्षुद्र एवं मध्यम उद्योग एमएसएमई को सहायता डेडिकेटेड काउंटर्स एवं प्रोसेसिंग एरिया ए सबको ठीक भाबरे नियंत्रण करिबा पई डाकघर रप्तानी केन्द्र को आसंतु
2: समस्त डाकघर रप्तानी केन्द्र रे पार्सल पैकिंग यूनिट गुड़िकर प्रोविजन अछि जेउथरे पैकेज फैसिलिटी मध्ये उपलब्ध
3: खाली सेतिकि नहि एक्जिटिंग बल्क कस्टमर्स का पाई प्रोविजन अनुसार टिकस फैसिलिटी प्रदान करा जाउछि
2: डाकघर रप्तानी केन्द्र डीएनके एबे आपणक सेवा रे
4: हाँ, ये मुदिटी भलो लागुछि पत्नी को पसंद आसीबो
5: हां सर आपणक चॉइस बहुत भलो अछि आ ओ डिजाइन भी नुवा
4: डिजाइन नुवा अछि ठीक अछि किंतु सुनार विशुद्धतार प्रमाण केउठी मिलिबो
5: सचेतन ग्राहक हुवंतु आज ही डाउनलोड करंतु बीआईएस केयर ऐप सुना किनिबा पूर्वरो बीआईएस केयर ऐप रु एचयूआईडी कोड निश्चय जांच करंतु
2: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित संस्था आरई जथा बैंक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी पेमेंट सिस्टम अंशग्रहणकारी पार्टिसिपेंट्स क्रेडिट इनफॉर्मेशन कंपनी विरुद्ध रे आपणकर अभियोग रे समाधान पई प्रथमे संपृक्त नियंत्रित संस्था निकट रे आपणकर अभियोग दाखल करंतु एवं रेफरेंस नंबर प्राप्त करंतु
3: जदि 30 दिन मध्यरे संपृक्त नियंत्रित संस्था कोनोसे समाधान न करंती किंबा आपण प्रदत्त समाधान रे संतुष्ट नहुंती तेबे आपण https://cms.rbi.org.in रे लॉगिन करी रिजर्व बैंक ओम्ब्युट्समन को निकटरे किंबा crpc@rbi.org.in रे ईमेल करी अथवा सेंट्रलाइज्ड रिसीप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल विस्टा सेक्टर 17 चंडीगढ़ 16001 7 ठिकणा रे डाक द्वारा पठाई अभियोग दाखल करि परिबे
2: मने रखंतु सीधा सड़क भारतीय रिजर्व बैंक रो ओम्बुड्समैन को निकट रे दाखल होइतिबा अभियोग प्रत्याख्यान हेबार संभावना अछि
3: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित रे जारी
6: पवित्र रथयात्रा रे पूर्वतट रेलपथर विनम्र सेवा जारी रहिछि ए वर्ष यात्रीमानंक सुविधा पई ओडिसार विभिन्न प्रांतरु ओ पडोसी राज्यरु विशेष ट्रेन चलाचलर घोषणा करा जायछि एति सहित अतिरिक्त टिकट विक्रय केन्द्र यात्री सहायता केन्द्र ओ स्टेशन मानंकरे यात्रीमानंक सुरक्षा पई विशेष व्यवस्था करा जायछि पूर्वतट रेलपथ आपणक सेवारे
7: जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ वर्तमान आमे सप्तावरण मूर्ति तीन रथरे विराजमान कर सारे चारि विग्रह एवं अर्चा विग्रह बा विजय प्रतिमा

0: श्री जगन्नाथ एवं ए राज्यर प्रकृत जे राजा हेकर कार्य तुलाउछन्ति से तांकर सेवक एही कथाटी से सारा भारत रे प्रचार करिबा फळरे दक्षिण देशरु जोठु हिंदू राजा मानंक पटरु तांकु विपद थिला से हिंदू राजा माने से कथाटाकु बुझिले अरे अरे ओडिसा राज्य एभलिया ए राज्यर राजा जगन्नाथ होउछन्ति ए राज्यर राजा एवं ए राज्यर प्रकृत राजा होउछन्ति तांकर सेवक तांकर राउतपणरे ये तांकर सेवा करुछन्ति ताले एड़े बड़ पीठ एड़े बड़ संस्कृति संपन्न धर्म आचार पूर्ण ये राज्य उपर आम आक्रमण करवानी जहाँफल दक्षिण पटर आक्रमणटा प्रतिहत होला प्रतिहत होवारु राजांकर जेतक बल थिला जेतक सैन्य सामंत सब थिले से सबको लगे करी से उत्तर पटु जो पश्चिम बंग पटु जो प्रकार अफगान मानकर आक्रमण होतला से आक्रमण रे समस्त शक्ति लगे करी आक्रमणकारी मानकु तोड़ी देले एटा हला इतिहास एवं सेइतिपई सेही दिनरु सेही द्वादश शताब्दी थारु ए राज्यर राजा निजकु राउतपणरे महाप्रभुंकर चरणारविंदरे समर्पित करी सेही दिनरु सेवा करी आसछन्ति।
1: पवित्र रथयात्रारे पूर्वतट रेलपथर विनम्र सेवा जारी रहिछि। ए वर्ष यात्रीमानंक सुविधा पई ओडिसार विभिन्न प्रांतरु ओ पड़ोसी राज्यरु विशेष ट्रेन चलाचलर घोषणा करा जायछि। एथिसहित अतिरिक्त टिकट विक्रय केन्द्र यात्री सहायता केन्द्र ओ स्टेशन मानंकरे यात्रीमानंक सुरक्षा पई विशेष व्यवस्था करा जायछि। पूर्वतट रेलपथ आपनंक सेवारे।
2: ओडिशार प्रगति पथरे जोड़ी हेउछि विकासर नुआ अध्याय। दूरता कमाई गाँ कु गाँ सह जोड़ुछि सेतु बंधन। छात्र छात्री प्रतिबंधक साजुनी बढ़ला नई जातायत तो होगम सुगम ग्राम्य सड़क दुआरे पहुंचुची आंबुलांस गाँ को बजार सह जोड़ुची प्रशस्त सड़क चाषीर फसल ठारु कुंभारर माटी हांडी सबुपाई खोलुची नुआ सुजोग पर्यटन स्थली को सुगम करुची सड़क संजोग बढ़ुची पर्यटकों आगमन गाँ गाँ में लंबी उन्नत सड़क दृढ़ होउची विकासर भित्तिभूमि समृद्ध होउची ग्रामीण ओडिशा सड़क सेतु ओ भित्तिभूमि विकास माध्यमरे पूरण हेउछि यशस्वी प्रधानमंत्री पूर्वोदय संकल्प माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मार्गदर्शन ओडिशार विकास पई प्रतिबद्ध ग्राम्य उन्नयन विभाग।
3: मशाबाहित रोग डेंगू मलेरिया एवं जापानी ज्वर हेउछि आम राज्यर मुख्य मशाबाहित रोग।
4: वर्षा ऋतुर आरंभ ओ शेष उभय समयरे मशा वंश वृद्धि निमन्ते अनुकूल परिवेश सृष्टि हुए ओ एई तीनोटी रोगर प्रादुर्भाव बढ़ी जाए।
3: एथिरु रक्षा पाइबा पई घर चारिपाखरे ओ घर भितरे कौनसी स्थानरे सात दिनरु अधिक समय पानी जमि रहिबाकु दियंतु नाही।
4: पानीकु धरि रखुथिबा भंगा डब्बा सढ़ेइ अव्यवहृत हांडि टायर आदि नष्ट करि दियंतु।
3: घर पाखरु बणबुदा सफा करंतु।
4: नाळ नर्दमारे ओ खालुआ स्थानरे जमि रहुथिबा पानीरे मशा निरोधक औषध पकाइबाकु स्वास्थ्य कर्मचारी बा पौर कर्मचारीकु सहायता करन्तु।
3: दिन हेउ बा राति सोइबा बेले मशारी व्यवहार करन्तु।
4: शरीरकु यथासंभव अधिक ढांकिबा भळी पोशाक पिंधन्तु।
3: स्वास्थ्य ओ परिवार कल्याण विभाग ओडिसा।
5: पवित्र रथयात्रा उपलक्षे सुभद्रा शक्ति बजार आपणंकु जणाउछि असुमारी शुभेच्छा। एही शुभ अवसररे सुभद्रा शक्ति बजारे एसएचजी मा मानंक हात तयारी हस्ततंत ओ हस्तकला सामग्री सहित मिलिट्रु प्रस्तुत विभिन्न जैविक सामग्री अपूर्व संभार। पवित्र घोषयात्रा उपलक्षे सुभद्रा शक्ति बजार रे विभिन्न क्रय उपरे स्वतंत्र रिहाती। आसंतु आपणंक अपेक्षा रे सुभद्रा शक्ति बजार एसआईआरडी कैंपस यूनिट 8 भुवनेश्वर।
0: जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। मु आपणंक कहुतली गजपति महाराजंकर सेवा कथा आपण आ गोटे कथा जानिथांतु श्रोता बंधु। गजपति महाराजा चाहिथिले ଭାରତର ଜଣେ ବଡ଼ ଓକିଲ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ, ବହୁତ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ଓକିଲ ବୃତ୍ତି ବା ଅଧିବକ୍ତାର ବୃତ୍ତିକୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଏବଂ ସେହିଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଲା, ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଜଣେ ସମର୍ପିତ ରାଜା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ସର୍ବସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ଅତୀତରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୋଇ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବକଳେବର କରେଇଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଷର ମହାନ୍ତି ନେଇ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ପୁଣି ନବକଳେବର ବିଗ୍ରହ କରେଇକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହାଫିଜ୍ କାଦର ହେଇଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ନୀଳଶୈଳ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା ହେଇଛି ସେ ସବୁ ଏଇ ଗଜପତି ବଂଶର ପୂର୍ବ

0: श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमांगलोकत्रयाश्रय यही श्रीक्षेत्र श्री शब्द को नहीं एते रुद्धिमंत एते विश्व दरबार परिचित आज आम मैने जो स्थान को गले मुझे भारतर बाहर को यूरोप महादेश जगन्नाथ महाप्रभु महाप्रभुंकर पाख बा क्षेत्र जड़े मनीष बोली एत आदर पाइक आसी ये हूँ महाप्रभुंकर आम मानों कृपा करुणा से सबू करवा से महाप्रभु को सका उठिले नाम ने रात गले नाम देवा बर्तमान देखत फेरी आसुंच गजपति महाराज ससम मान पाछटी आणुंतर जो रही पारिषद वर्ग यही कथा को बर्तमान एवं आसतु शुणा बड़दाण्डर कि श्रद्धालु भक्ति श्रद्धालु मानकर भक्तिपूत अभिव्यक्ति आम केन्द्र तरफ संग्रह करा तेणु आपण मानू आम से कार्यक्रम सम्मिलित कराऊ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ
1: जय जगन्नाथ ना है शारदा विश्वास मु भुवनेश्वर आसी आज सब बड़ कथा ठाकुर एमती मो भाग्य जे आज दिन में मोर ये नातुणी जन्मदिन मोर भी जन्मदिन तापर ठाकुर तो अनुभव बहुत किसी मो जीवन बहुत किसी बहुत किसी भगवान सब मोर करते चाह चाहे भी ठाकुर को मुझे सब बड़े पाई दर्शन सब बड़े मो पचर ठाकुर छाई मो पर प्रति आशीर्वाद भी बहुत बढ़िया रखी आउ अनुभव ठाकुर कहले महिमा बहुत किसी अच्छी
2: आज आपको ये केमती लगुच जो बड़दाण्ड में प्रभु घोष जात्रा चर्मचक्षुरे देखुं केमती अनुभव
1: मानते बहुत बढ़िया एत वर्षार भी सब भक्त मान आसरे जगन्नाथ महिमा एमती अच्छी जोटा कि समस्ते आतीक भी कालिया को डाकुच प्रभु समस्ते आसते पर पिला छुआ समस्त घर भले भी पहुँचा आ समस्ते भी जमी दर्शन पाइबे निश्चित पाइबे
3: मो ना है डॉक्टर विश्वजीत महापात्र आज्ञा ये सारा विश्वर अगणित जगन्नाथ प्रेमी श्रीक्षेत्र प्रेमी सारा भारत बर्ष जिते अच्छा सनातनी जो मान आराध्य देवता श्री जगन्नाथ आज तर नवदिन व्यापी जो घोषयात्रार प्रथम दिन किद आगर स्नान जात्रा जाइला नवजौवन दर्शन जा गोटे दिन तले सबुदिन ठाकुर आमर भितर था श्रीमंदिर भितर था आज तर इच्छा जो कि भक्त जो कि मानने दर्शन करने को मंदिर भितर को जापार ना गहन से जीवे आम जगन्नाथ कौच जगतर जे नाथ से केवल पुरी को सीमित नुह ओडा को सीमित नुह भारत को सीमित नुह सारा विश्वर सीए नाथ तेणु श्री जगन्नाथ आम कौचु तेणु समस्त जनकल्याण आज जो बाहरी ठाकुर जे सारा विश्वर शांति प्रतिष्ठा हो जो विभिन्न जगार युद्ध विभीषिका देखा जाइए लोक मान भितर बहुत प्रकार असामंजस्यता देखा जाइए लोक मान बहुत विभीषिका देखा जाइए से सब समाधान हो पृथ्वी पक्ष जनसमाज एमती आहरी भल उन्नत स्रोतर आगे जाऊ
4: अभिषेक दास कटकु आत्येक वर्ष मुझ पुरी आसे महाप्रभु दर्शन करने को सौभाग्यर कथा आज मोर जन्मदिन मु महाप्रभु पाखे सब प्रार्थना करे प्रभु कोटि जन्मर पुण्यवल श्रीगुंडीचार जन्म मिले आप मत आज जन्म देखते मुझे ऋण ये जन्म सुझीपरिनी किमती हसी खुशी की संसार मुझे विदाय दी देखो संपूर्ण भाव मुझे निजक समर्पित करदे महाप्रभु पाखे आज सब गोटे विचित्र जिनस घटला बैश पहाचे महाप्रभु दुई घंटा धरी अटकी रे आसिले हुकिले मुझीपरि कौन महाप्रभु बरात थी तापर आउ गोटे दुर्भाग्यजनक कथा घटला जो आज ताइयाटा महाप्रभु खसीगला जोटा कि महाप्रभु जानते कौन तार उद्देश्य थी आम तो कहींपरानी कितनी नवेदन महाप्रभु पाद ते मोर श्रणापन जे महाप्रभु आपण मान भक्त जो भाई भाव में आज ओदारे ढाई आप दर्शन करवा सदा सर्वदा घंटा घोटे रख
5: जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ आमे वर्तमान आज विश्व प्रसिद्ध पवित्र रथयात्रा

0: बंधुगण श्रोता बंधुगण आपण मानू आम कहवाक चाहूँ जे लोक भितर के आग्रह लोक भितर के उत्कंठा लोक भितर के जो विचार याको आप देखिले अनुभव करें जे सतरे बलभद्रंकर तालध्वज रथ आउ आग को जापरना जदि आग को जीव ताल लोक जो जनसमुद्र अटकेबाक पड़ गजपति जेतेबले छेरा पहरा सारी राजनगर को चलीगले तापर आरंभ हो गला भिड़ ये असंभव भिड़ ये असंभा ये भिड़ को रोक रोका नगले आग को रथ आईपर ना श्रोता बंधुगण एवं लोक मानू आम कहले पुलिस बाहन कहले रथ अमीन बड़ पार्टी घोषणा कले
1: डॉक्टर कानून को
0: हाँ जय जगन्नाथ वर्तमान आपण
1: मते सुनि परचंती देखलो हाँ अच्छा जय जगन्नाथ कहले जे देखंतु 15,000 आरक्षी वाहिनी से डीजिंग को ठारु
0: जय जगन्नाथ
1: पाइंग को पर्यंत नियुक्त अछंती
0: आज्ञा
1: किंतु नियुक्त थिले मध्य 15,00,000 लोक को 15,000 आरक्षी वाहिनी कौन बा करि पारिबे
2: आमे जहाँ
1: गणतंत्र जिते विपुल जनसमागम होने तो प्राण पणे आपत तो कहते सका चारिटा राति आसिक भोर रु से पर्यटन सेमती बड़दाणी ठिया होती कम कष्ट एवं जो आरक्षी बाहन आसी तार भितर भी आम देखु कहार बयस 55 है सब अवसर समय अवस्था पहुँचे अधिकारी ड्यूटी आसी कष्टर सीमा ना एवं खाली पादरे डीजी पुलिस एडीजी पुलिस आउ मंदिर प्रशासक पुरीर जिलापाल पुरीर आरक्षी अधीक्षक एम बर्षे तीन ती बुड़ कर खाली पादरे बुल कर चेष्टा कर सब सुंदर भाव कौन करें सहित आम जनसाधारण सहयोग रहा दरकार गोटे कथा आमको जानवाक हम जे 15,00,000 लोक 15,000 पुलिस तेणु से साधारण भक्त श्रद्धालु जो मैंने व्याकुित होकर विशृंखलित रथयात्रार निर्विघ्न समापन समान दायित्व रोचे आम जदि समस्ते सहयोग न करवा केते लोक कौन कर देखते बर्तमान रथ चकड़े आउ दुईट रथ उपस्थित अच्छा ये रथ चकड़ा जनसमुद्र में परिणत हो कहते कि समय पूर्व आपण सम्मुख भाग जनाकीर्ण रही नियंत्रण बाहर को चली जबार आशंका रोचे तथापि आम आशा करवा सब असुविधा न होक सुंदर भाव एवं जो आरक्षी बाहन मैंने अच्छा बर्तमान स्वयं आलुओ जलुची आपण मैंने तो आम रेडियो कहते आज देखी पार ना प्रकृत में पखापाखी 500 पखापाखी 500 रु अधिक हम आरक्षी बाहन जो मैंने रथ को कड़न करके बेश पोशाक पिंधिं से बेश पोशाक आलोक संयोजित हो देह गुड़िक बर्तमान प्रज्वलित अवस्था आमको देखा बड़ सुंदर देखा सीठू आप देखिपुर आपण आखिरी पड़ू सेठिकार वर्णना आपर करूँ मुझक बाधा देली से क्षमा चाहूँगी कारण यठकार कथा किसी कहार तेणु आपण को अनुरोध आपठिकार धारा बरणी प्रदान जारी रखु
0: जय जगन्नाथ शांतनु बाबू भल कथा आप कहते किंतु वर्तमान बड़दाण्ड सिना किंतु जी लोकंर समागम ताकु नियंत्रण करिवो किए श्रद्धालु भक्त मानू नियंत्रित करी ठीक भाव तीन रथ को आग को नब किए खाली कौन डीजी एवं एडीजी एसपी मान नहीं पारे आमर जो श्रृंखलित भाव जो पुलिस भाई मैंने अच्छा आरक्षी भाई मैंने अच्छा से मैंने सिना टाणिक आग को ने श्रद्धालु भक्त मानू नियंत्रित करे वर्तमान पूरा पूरी भाव बड़दाण्ड जनाकीर्ण वर्तमान तीन रथ सम्मुखे एवं पछपटे बहुत प्रकार लोक भेड़ी रही कहते तीन घंटा रु 4 घंटा काल ठिया जो लोक मैंने रही धर्यच्युति घटी वर्तमान से आवेग उत्कंठार सहित जो मैंने

0: नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। से महाप्रभु बड़वार सामंतंकर से कला रंगर घोटक चारिज से माने आश्चर्य होती, अरे पगल, अरे भक्त माने एमती कहीं पार्श्व देवता माने से माने आनंदित होती, अरे ठाकुर को देखापे एमित तुम्हें हौच आउ जे सारथी अच्छा मतली से मध्य अबाकबा हो जाती, अरे भक्त मानकर कौन ये भावना समस्त भितरे आउ जी असी रथाधिप महाप्रभु जी बलभद्र आउ रामकृष्ण सी तो भक्त को पाई सी मध्य विहोल भाव विहोल हो जाती, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा बा कर्तुम से महाप्रभु तुम पाखरे कौन बा असंभव कौन बा असंभव। सुंदर भाव
1: केड़े सुंदर भाव रे घोर घर घर नाद रे चतुर्दी का प्रकंपित करी श्रद्धालु भक्त माने चाड़ी नौ प्रभु को प्रभु रथ चलू रथ छुईवाई केते आकुलता केते व्याकुलता भक्त प्राण रे जो सम्मोहन प्रभु को देखू प्रभु रथ जो टाणीबू मनस्कामना पूरण करूँ यही जो भाव यही जो श्रद्धा यही जो विश्वास आज सृष्टि बड़ता
0: न जावत उमानाथ पादारविंद भजंती हलोके परे वानराणाम न तावत सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्व भूताधिवासम। हे प्रभु जे पर्यंत तुमर चरणारविंद रे आम मन मज्जी न जाइछि लग्न न होइछि से पर्यंत आमर मुक्ति काही, तेणु उमानाथ हे महारुद्र हे बलभद्र हे रुद्र स्वरूप तुम परम ब्रह्म दारु ब्रह्म तुम चरण रे आमर मति रहु आमर गति रहु आम जीवन रो सबु समय रे तुमे आशीर्वाद रो मुद्रा रे आमको अभय मुद्रा रे बरद मुद्रा रे आमको रक्षा करूथा। हल मुसल महाप्रभुंकर से होती आयुध आपण माने जानती अहं वैश्वा नरभूत्वा प्राणी नाम देह माश्रित आउ भगवान कहते जे मु हे अर्जुन मु तुम उदर रे वैश्वानर हो रही मात्र उदर रे जो चर्व्य चस्य लेह पेय ये खाद्य आमे कौटु पाइबा चाषरु पाइबा कृषिरु पाइबा भूमिरु पाइबा तेणु अन्नाद भवंती भूतानी पर्जन्यात अन्न संभव से पर्जन्य से वृष्टि आज जो परी भाव रे गोटिए दिन शुभ दिन रे शुभ लग्न रे जेपरी मन हेउची जगतवासी को आज आशीर्वाद केवल महाप्रभु देइछंती चासी कुल को आशीर्वाद देइछंती से महाप्रभुक हाथ में अच्छी लंगल अच्छी मुसल हल मुसल मुसल सी कर प्रजुक्ति विद्या विभिन्न प्रकार सामाजिक जो आमर दैनंदिन जीवन समस्त कौशल क्रिया से कथा करुवा बेले लंगल महाप्रभु कृषि उन्नति पाई आम को आशीर्वाद दे लंगल होमर मूल क्रिया मूल चिह्न से ताकू आमे भूली पारिबा नाही। आज हुए तो ट्रैक्टर माध्यम रे आमे चाष करूचे किंतु से ट्रैक्टर रे जो फाड़टीए लगी जी कर्षण करुची से लंगल सदृश तेणु मूलटी होउची महाप्रभुंकर आशीर्वाद समस्ते पूर्ण थरे उद्यत होउचंती प्रतिष्ठा करुचंती आउ समस्तंकर एकाग्रता आसी आइची किपरि बड़ ठाकुर को आगकु नहीं करी जिवे समय अनुसार आमे जहाँ करिवार जो थिला हेले कर्मणी आमे सिना प्रस्तुत करिये किंतु महाप्रभुंकर इच्छा रे ये जगत चलिबो महाप्रभुंकर इंगित रे जगत आतजात हेबो महाप्रभुक इंगित जहाँ थिबो सेया आमे प्रार्थना करूची हे महाप्रभु बड़ ठाकुर आपण जदि आगुकु नजीबे माँ सुभद्रिका किपरि आसीबे आउ महाप्रभु जगन्नाथ सी मध्य कौन बा करिवे तेणु आपण आगकु आसंतु तेणु समय
1: आगेबे

0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस साल 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के तहत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1,00,00,000 किसानों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अल नीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलेंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं आईसीएआर कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक साथ आगे बढ़े। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन की तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत सरकार का लक्ष्य है और इससे भारत एक वैश्विक शक्ति बनेगा। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर इस्तीफा सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और मुर्शिदाबाद हरियाणा में, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ उत्तर प्रदेश में, सहारनपुर के देवबंद, दिल्ली और अन्य स्थानों पर यह अभियान चलाया गया। ये मामला उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। ओडिशा के पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ में एक श्रद्धालु की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों को खींचने के समारोह के दौरान श्रद्धालुओं की अत्यधिक

0: भीड़ के कारण यह दुर्घटना हुई। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक सातवें ओवर में बगैर कोई विकेट खोए 43 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी रे संवाद सुनिले रिले करी सुनिलु आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र रो आकाशवाणी संबलपुर सुनंतु संबलपुरी मुख्य संवाद।
2: आकाशवाणी संबलपुर मुख्य खबर संगे मुई अतीश कुमार शतपथी। भक्तिमय परिवेश पुरी ठाने अनुष्ठित होइछे महाप्रभुंकर विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा। जन्मविधि के 9 दिन यात्रा बाहरिले चतुर्थामूर्ति। शुभेच्छा जनाले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। भक्त और भगवान मिलन पर्व सारा विश्वति विरल है कहले राष्ट्रपति। रथयात्रा भारत कालजयी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ऐतिह्य गोटे अनन्य अभिव्यक्ति है कहले प्रधानमंत्री। हरियाणार जिंद रेल स्टेशन ठाने देशर पहला हाइड्रोजेन थी चलवा ट्रेन चलाचल एबाकेल शुभारंभ करबे प्रधानमंत्री। ओत्का वयस्क और गुरुतर रोग न पड़ीथिबार कैदी मानकु तुर्ती मुकलाबार लागि गोटे समन्वित नीति प्रस्तुत करबार दिगे केन्द्र और राज्य सरकार को निर्देश दिले सुप्रीमकोर्ट। बिमस्टेक सदस्य राष्ट्र मानकर भितरे भिन्न भिन्न दिगे सहयोग नहींकर जोर दिले जातीय सुरक्षा परामर्शदाता। पेट्रोल डीजेल और एटीएफ रप्तानी शुल्क संशोधन कले सरकार। महान विप्लवी चक्रधर बेहरा राज्यस्तरीय जयंती है पालित। मुख्य शासन सचिव अध्यक्षता भुवनेश्वर ठाने अनुष्ठित है सचिवस्तरीय समीक्षा बैठक। देवगढ़ जिलापाल अध्यक्षता अनुष्ठित है जिलास्तरीय राजस्व समीक्षा बैठक। नुआपड़ा जिला अनुष्ठित है मृत्तिका संरक्षण और जल विभाजिका विभाग तरफ समीक्षा बैठक सामिल है विभाग निर्देशक। पुरी ठाने गलाकेल भिन्न भिन्न जलबंदी प्रवण जगह बुली देखी तिथि समीक्षा कले गृह निर्माण और नगर उन्नयन मंत्री। सुवर्णपुर जिलार पाताली श्रीक्षेत्र ठाने अनुष्ठित है पवित्र रथयात्रा। जापान ओपन सुपर 250 बैडमिंटन टूर्नामेंटर क्वार्टर फाइनाल थी पहुंचले पीवी सिंधु। लघुचापर प्रभाव थी राज्य भिन्न भिन्न जगन होउचे वर्षा एवं 24 घंटा भितर जबर वर्षा नहींकर समलपुर बौद्ध सोनपुर देवगढ़ जिला के सतर्क सूचना जारी कला भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। एचरिन मुख्य खबर शेष है जुहार।
1: आकाशवाणी संबलपुर शुणु आज प्रसारित होगा केतक कार्यक्रम संपर्क सूचना। आज संध्या 6:10 ओडिया लघु संगीत शुणे। संध्या 6:30 विकास मंत्र रिले कर शुणु आकाशवाणी कटक केन्द्र। कृषि संसार कार्यक्रम राति 7:30 राति 8:02 शुणे एनसीआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत शरद बादन शुणे राति 8:30 परेषण करेंगे पंडित ब्रिज नारायण। राति 10:00 प्रचार कर गीतिनाट्य श्रीगुंडीचा रचना एवं प्रयोजना शारदा प्रसन्न नायक। संगीत भुवनेश्वर मिश्र। रिले कर शुणु आकाशवाणी कटक केन्द्र।

0: गीत पदे सुनालु नहीं क्या
1: मन लगला
0: हाँ हाँ महाप्रभु के स्वतः तमने एक सकाल जेन्ता नहीं देखु थे आके
1: हाँ
0: एंता आखि झोली पड़ू थे जे काम बोलने को हमी ये तो गीत सुनला
1: हाँ।
0: महाप्रभु कथा बने भी लगला आज दिन के चाह करी हेले से आज्ञा कर पदे कथा मुई हेटा सुरता कर जाए काना कह तो
1: जैविक चाष कथा कह तो
0: हाँ खाली जैविक चाष नहीं आमर जेन भाई बहन मान जमी बाड़ी कम अच्छे से भाई बहन मैंने जदि एंता पांचटा किस्मर चाष गोटे जमीन करें बोले काण है कहमी क्या गोटे पर गोटे गोटे पर गोटे गोटे पर गोटे बाहर थोड़ा दु पैसा घर के ढुकुवा तार बाहर जेन जैविक पद्धति कले काण हाबा आमर खाली बिकमा कि आम खेमा जे खेई नमा बोले रोग बेमार नहीं आम जैविक पद्धति जदि जेनसी भी हूँ पनीपरिया हो कि आमर शस्य हो जाना भी जदि आम बाहर कर पार्ला तार चाहिदाटा बजार न केतनी के दिया आम जदि रासायनिक सार औषध दे कर जेन दरबटे बाहर करामा सेनु जदि आम बजार जितकी टाँ थी बिकी पार्मा तार दाम जितकी रहा आम जदि जैविक पद्धति दिन कर पार्मा बोले अत्का दाम भी हो यह जिन सब लोग जान लेन जे आम जितकी ओषो सार देमा जितकी बेमार के घिनी कर आनला से बल कर समस्ते चाहूचन दुई पैसा पचे जाऊ आर आम भल नुको जिनिस आम पनीपरिया हो कि जेन आम दरब हो खेकर चलमा बोल से बल कर खाली आम ओषो सार दे ने जह बाहर अमलटा बढ़ी जावा और आम बिकमा ने से कम अमल हेले भी आम हेतकी अटका पैसा दिन बिकी पार्मा जेन दु पैसा तम लाभ पे पार्मा ये काम बोलरी कहमी
1: काणा
0: एंता कथा हो दमा कि समय हलानो जिमा बोल जे
1: जाऊ न बिल हलानो
0: जाऊ

0: सबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। चलिए हमेशा की तरह करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर से विचार से, जिसे हमें भेजा है कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने। लिखते हैं,
2: नजरों में सम्मान और बोलने में मर्यादा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर होती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी का।
2: ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
1: और छत्तीसगढ़ लुकाउपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी जी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
1: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी।
2: सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
1: आप सबके संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
1: श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक विकास की।
2: कल हमने बात की थी मिस्र की सभ्यता की और जाना था कि कैसे उन्होंने पेपरस को लेखन सामग्री बनाया और लेखन की विधा का विकास किया। आज के एपिसोड में हम खोलेंगे एक और नया और बेहद रोचक अध्याय।
1: तो श्रोताओं, आज हम बात करेंगे भारत की, यानी अपने देश की। तब तक कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। हम सभी जानते हैं कि कागज का आविष्कार चीन में हुआ
2: जी।
1: लेकिन आइए अब जानते हैं कि भारत में लोग लिखते कैसे थे।
2: प्राचीन भारत में ज्ञान का संरक्षण मुख्य रूप से मौखिक परंपरा से होता था,
1: यानी वाचिक परंपरा
2: जी। वेदों को गुरुओं ने हजारों वर्षों तक गुरु शिष्य परंपरा में मौखिक रूप से संरक्षित रखा। धीरे धीरे लेखन का प्रचलन बढ़ा।
1: श्रोताओं, भारत में लिखने के लिए भोजपत्रों का इस्तेमाल हुआ। भोजपत्र एक विशेष प्रकार का लेखन पत्र था जो भोज या भूर्ज वृक्षों की छाल से बनाया जाता था। बता दें कि ये वृक्ष हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में, विशेषकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाया जाता है
2: जी।
1: अब प्रश्न ये उठता है कि भोजपत्रों को लिखने योग्य कैसे बनाया जाता था। तो विमलेश जी, अब आपकी बारी।
2: अजीत जी, भोज या भूर्ज वृक्ष की बाहरी छाल को सावधानी से निकाला जाता था। उन्हें सुखाकर और समतल बनाकर उन पर वनस्पति से बनी स्याही से लिखा जाता था
1: जी। श्रोताओं, भोजपत्रों पर कई प्राचीन पांडुलिपियां लिखी गईं। जब कागज नहीं था तो भोजपत्र ही विद्वानों का नोटबुक था। भोजपत्र पर ऋग्वेद, अथर्ववेद और कश्मीर क्षेत्र में राजतरंगिणी की मूल प्रतियां मिली हैं। अनेकों बौद्ध ग्रंथ भी प्राप्त हुए हैं। कई प्राचीन नाटक भी भोजपत्रों पर लिखे मिलते हैं।
2: तो श्रोताओं, भोज वृक्ष की छाल पर सिर्फ शब्द ही नहीं लिखे गए, उनमें भारत का इतिहास, धर्म, संस्कृत, साहित्य, गणित, ज्योतिष और दर्शन भी सुरक्षित किया गया।
1: और हाँ श्रोताओ, भोज पत्र के अलावा दक्षिण भारत में ताड़ पत्र पर भी लिखा जाता था। इसके अलावा ताम्र पत्र और शिलालेख भी हमें मिलते हैं।
2: लगभग पहली दूसरी शताब्दी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। मिस्र में स्क्रॉल बनाए जाते थे, पन्नों पर भी लिखा जाता था। लेकिन अब मानव सभ्यता में शुरू हुआ एक और नवाचार
1: जी।
2: लोगों ने पन्नों के किनारों को जोड़कर पुस्तक बनानी शुरू की। अजीत जी, उन पुस्तकों को क्या कहा गया?
1: विमलेश जी, उन पुस्तकों को कोडेक्स कहा गया, जो आधुनिक पुस्तक का पूर्वज है
2: जी।
1: कोडेक्स प्रारूप से बहुत से लाभ हुए, जैसे किसी भी पृष्ठ पर तुरंत पहुंचा जा सकता था, पन्नों के दोनों ओर लिखा जा सकता था
2: और अधिक से अधिक जानकारी एक ही पुस्तक में संग्रहित की जा सकती थी
1: जी।
2: कोडेक्स का विकास रोमन साम्राज्य में हुआ। आइए जानते हैं कुछ और बातें।
1: मध्य युग में पुस्तकें चर्म पत्रों पर भी लिखी जाती थी
2: जी।
1: यूरोप के मठों में विशेष कक्ष होते थे जिन्हें स्क्रिप्टोरियम कहा जाता था। यहाँ लोग रात दिन बैठकर मूल पांडुलिपियों की नकल करते थे
2: जी।
1: लिखने या नकल करने वालों को स्क्राइब्स कहा जाता था।
2: नकल करने वालों को बहुत सावधान रहना होता था। वे धीरे धीरे शब्द ब शब्द कई बार ऊंचे स्वर में पढ़कर और उन्हें दोहरा दोहरा कर लिखते थे, क्योंकि कोई गलती न हो जाए, क्योंकि गलती हो जाने पर लिखे हुए शब्दों को मिटाने की उचित व्यवस्था नहीं थी। उन्हें चाकू से खुरचना पड़ता था जिससे कागज या चर्म पत्रों को नुकसान होता था
1: जी। तो धीरे धीरे कोडेक्स प्रारूप ने पुस्तकों का रूप धारण किया और इनसे मानव सभ्यता के पठित ज्ञान में और अधिक वृद्धि हुई।
2: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: कोडेक्स किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: कोडेक्स किसे कहते हैं?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं।
2: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब आइए श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें विश्वव्यापी समस्या जलवायु परिवर्तन के बारे में उदाहरणों सहित सविस्तार समझाया गया है और बताया गया है कि इसका निदान किन किन उपायों से हो सकता है।
1: जलवायु परिवर्तन।
3: साथियों नमस्कार, मैं हूं दिनेश, आप सबका स्वागत है हमारी रेडियो गोष्ठी में। आज की गोष्ठी का विषय है धरती करे पुकार। साथियों इन दिनों सभी संचार माध्यमों में एक विषय छाया हुआ है और वो विषय है जलवायु परिवर्तन। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दो खास मेहमानों को बुलाया है, डॉक्टर नमिता और डॉक्टर दिवाकर। नमस्कार।
4: नमस्कार।
3: साथियों जलवायु परिवर्तन एक गंभीर पर्यावरण संकट है जिससे आज सारी दुनिया जूझ रही है। चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर नमिता से। तो नमिता जी, पहला प्रश्न ये है कि जलवायु परिवर्तन है क्या? क्या इसे मौसम का परिवर्तन कहेंगे?
5: सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि मौसम परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन में बहुत अंतर है।
3: जी,
5: मौसम परिवर्तन क्षेत्रीय या स्थानीय होता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन बिल्कुल अलग है।
3: जी, लेकिन वो कैसे?
5: जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए चलिए सबसे पहले ध्यान देते हैं जलवायु शब्द पर। ये दो शब्दों से बना है, जल और वायु।
3: जी,
5: यानी जलवायु परिवर्तन में जल और वायु की स्थिति में परिवर्तन को मापा जाता है।
3: जी,
5: लेकिन एक बात ध्यान देने की है और वो ये कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक है, यानी वर्ल्ड वाइड।
3: जी,
5: तभी तो दुनिया के सारे देश जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित हैं और विचार विमर्श के लिए एक मंच पर आ रहे हैं।
6: देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर एक वैश्विक मंच बनाया है जिसमें दुनिया के लगभग सभी देश शामिल हैं। और जानते हैं इस मंच की स्थापना सन 1992 में हुई थी।
3: जी,
6: वैसे जलवायु परिवर्तन कई कारणों से क्षेत्रीय स्तर का भी हो सकता है, लेकिन सारांश में कहा जा सकता है कि यदि पृथ्वी के मौसम और तापमान में लंबे समय तक बदलाव होता दिखाई दे तो ये जलवायु परिवर्तन है।
3: जी डॉक्टर दिवाकर, अब मेरा प्रश्न आपसे है।
6: जी,
3: आप हमें बताइए कि जलवायु परिवर्तन के संकेत क्या क्या है, यानी हम कैसे जाने कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है?
6: बहुत अच्छा प्रश्न है दिनेश जी। देखिए, इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब पृथ्वी का औसत तापमान, बारिश का पैटर्न, मौसम के प्रकार और ऋतुओं का स्वरूप कई वर्षों या दशकों में बदलने लगे
3: जी।
6: और स्थायी हो जाए तो हम इसे जलवायु परिवर्तन कहेंगे।
3: जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि हमारे जमाने में मौसम ऐसा नहीं था, अब बिल्कुल बदल गया है।
6: जी
5: जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक उदाहरण लीजिए, जैसे यदि आज से 20 वर्ष या लंबे समय के बाद ऐसा लगे कि पहले इतनी गर्मी नहीं थी जितनी अब हो गई है, पहले बारिश बहुत होती थी लेकिन अब कम या पहले से बहुत ज्यादा हो गई है।
3: जी,
5: और ये स्थानीय तौर पर ही नहीं लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र में या वैश्विक हो गई है, तो ऐसी स्थिति को हम जलवायु परिवर्तन कहेंगे।
6: जी, जैसे कि अनियमित बारिश और बाढ़ का आना, ग्लेशियर्स का पिघलना और इनके कारण समुद्र के जल स्तर का बढ़ना, बहुत अधिक संख्या में तूफानों या चक्रवात का आना और फसल, वन्य जीव और मानव स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभाव के लक्षणों का दिखाई पड़ना।
3: लेकिन दिवाकर जी, इसके कुछ कारण तो होंगे?
6: बिल्कुल दिनेश जी, कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य कारणों में से एक है ग्रीन हाउस गैसों यानी हरित गृह गैसों का बढ़ना। मैं अपने श्रोताओं को यहाँ पर ये बता दूं कि ग्रीन हाउस गैसें सूरज की रोशनी को तो पृथ्वी पर आने देती हैं, लेकिन पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने वाली गर्मी को रोक लेती हैं।
3: अच्छा
6: जी, और इससे जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ता है।
3: डॉक्टर नमिता
5: जी,
3: हमारे विद्यार्थी श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं।
5: इसे भी हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि पौधों के लिए गर्मी या तापमान को अंदर ही बनाए रखने के लिए शीशे का घर बनाया जाता है।
6: और इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है, लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। जहां तक ग्रीन हाउस गैसों की बात है तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन इत्यादि प्रमुख गैसें हैं। जी, तो इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है, लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती।
5: एक और उदाहरण लीजिए, जैसे धूप में खड़ी कार कितनी गर्म हो जाती है, क्योंकि गर्मी कार के बंद होने से अंदर ही फंस जाती है।
6: जी,
5: ग्रीन हाउस गैसें भी पृथ्वी के लिए ऐसा ही काम करती हैं।
4: अच्छा।
5: और फिर होता ये है कि हिमखंड पिघलते हैं, बाढ़ तूफान बढ़ जाते हैं, इससे जलवायु परिवर्तन तेजी से होने लगता है।
4: बहुत सुंदर उदाहरण हुई है। तो आप बात करते हैं जलवायु परिवर्तन होता क्यों है।
6: देखिए दिनेश जी, सबसे बड़े कारणों में से एक है जंगलों की कटाई, और कटाई की तुलना में पेड़ कम लगाना। वैसे नमिता जी, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे?
5: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। हम सब जानते हैं कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। अब यदि पेड़ ही नहीं होंगे तो जाहिर है कि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी।
4: बिल्कुल।
5: और इससे पृथ्वी का तापमान भी बढ़ेगा।
6: जी।
5: और तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर भी पिघलेंगे, और इससे बाढ़ तो आएगी ही।
4: बिल्कुल।
5: समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा।
6: एक और जरूरी बात यहाँ मैं बताना चाहूँगा।
4: जी।
6: शोध बताते हैं कि पिछली शताब्दियों में प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण जलवायु परिवर्तन हुए, लेकिन बहुत कम।
4: जी।
6: लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद से जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन यानी कोयला इत्यादि को जलाने, वनों की कटाई करने, वाहनों और उद्योगों के बढ़ने के कारण बहुत अधिक हुआ, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ा।
4: जी, इन दिनों अक्सर कहा जाता है कि कोयला, पेट्रोल और ईंधनों का बहुत ज्यादा उपयोग ना करें। क्या वाहन, कारखाने और मशीनें भी ग्रीन हाउस गैसें छोड़ती हैं?
5: जी बिल्कुल। वाहनों, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, कारखानों और भारी मशीनों से भी बहुत अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैस निकलती हैं। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि इनका उपयोग आप संतुलित तरीके से करें।
4: जी, तो आइए अंत में जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन को रोका कैसे जाए।

0: सकता है।
1: देखिए दिनेश जी, पहली बात है पेड़ लगाना और जंगलों को बचाना।
2: बिल्कुल।
1: और यदि पेड़ काटे भी जाएं, तो काटने की तुलना में और अधिक पेड़ लगाए जाएं।
2: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरी बात ये है कि हम वाहनों और कारखानों के लिए सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का उपयोग करें
1: जी,
2: और जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का ही उपयोग करें।
0: बिल्कुल। तो आइए अब जानते हैं कि आज हम कहाँ खड़े हैं।
2: साथियों, समाचारों में आप अक्सर बाढ़, तूफानों, भूकंप इन सब बातों की चर्चा सुनते रहते हैं। इसका कारण बहुत हद तक जलवायु परिवर्तन ही तो है।
1: जी
0: बिल्कुल।
1: और दिनेश जी, यहाँ पर मैं आपके श्रोताओं से एक विशेष बात साझा करना चाहूँगा।
0: जी।
1: क्या आपको पता है कि भारत के अनेक क्षेत्रों में तापमान की वृद्धि स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है? भाई अब तो ठंडे कहे जाने वाले पहाड़ी इलाकों का भी तापमान बढ़ गया है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। अब उदाहरण के लिए 2025 के बाद से हमारे देश का औसत तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा है।
1: जी।
2: जिसके कारण सर्दी सामान्य से बहुत कम थी और गर्मी सामान्य से ज्यादा।
0: ये तो बड़ी गंभीर बात है और ऐसा दुनिया के सभी देशों में हो रहा है। अभी समय है इस पर गंभीरता से विचार करने का और उस पर अमल करने का।
1: जी।
0: कहीं ऐसा न हो कि बहुत देर हो जाए। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर नमिता और डॉक्टर दिवाकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम शिक्षक, कुछ नए आयाम।
4: इस कार्यक्रम में एक आदर्श शिक्षक की भूमिकाओं की चर्चा की गई है और कतिपय शिक्षण प्रविधियों के बारे में बताया गया है, जिनके द्वारा शिक्षक बच्चों को नवाचारी विधियों के प्रयोग से बच्चों को और अधिक बेहतर ढंग से पढ़ा सकते हैं।

0: अक्सर अध्यापक ये प्रश्न पूछते हैं कि शिक्षा में मूल परिवर्तन क्या हो रहे हैं। वही विद्यालय हैं, वही शिक्षक हैं, वही पुस्तकें हैं, वही विषय हैं, वही सब कुछ है, लेकिन इन समानताओं में भी कहीं कुछ भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। आइए हम इसी संदर्भ में दो कक्षाओं का अवलोकन करें।
1: अपने से किताबें निकालो, चलो चलो अपने अपने पार्ट निकालो।
2: जी
1: तुम्हें भी
2: जी,
1: कह रहा हूँ। चलो शाबाश। हाँ गोपाल, इसको बोलो। हाँ इधर मेरी तरफ देखिए। हाँ शाबाश। अब मैं जो बोलूंगा मेरे पीछे पीछे दोहराना।
2: जी गुरुजी।
1: समझ गए?
2: जी।
1: अच्छा शुरू करते हैं।

0: आदि में होता है।
1: आदि में होता है।
2: गुरुजी, पानी का उपयोग घर के अलावा बाहर भी तो करते हैं, फिर किताब में केवल घर ही क्यों लिखा है?
0: तुमको कई बार कहा है कि जो किताब में लिखा है उसको पढ़ो और बीच बीच में मत बोलो।
2: जी
0: गोपाल
3: जी।
0: बेटा आगे तुम पढ़ाओ।
3: जी गुरुजी। पानी
1: पानी,
3: कुओं
1: कुओं,
3: नदियों
1: नदियों,
3: तालाबों
1: तालाबों
3: एवं झरनों से मिलता है।
1: एवं झरनों से मिलता है।
2: गुरुजी, झरना क्या होता है? मुझे तो बहुत सारे शब्द समझ में ही नहीं आते।
0: फिर बीच में बोले, आगे पढ़ो। चलो चलो शाबाश।
3: गंदे पानी के प्रयोग से अनेक बीमारियां हो जाती हैं।
2: गुरुजी।
0: हाँ बोलो।
2: पानी गंदा कैसे हो जाता है?
0: बीच बीच में ना बोलो,

0: तुम अपना अपना पार्ट पढ़ो,
1: चलो
0: चलो ठीक से बैठो, ठीक से पीछे हो जाओ।
2: आइए अब हम एक और कक्षा में चलें।
3: नमस्ते नमस्ते बच्चों, नमस्ते। अच्छा बच्चों, हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि पानी के कौन कौन से साधन हैं, ठीक
4: जी।
3: अच्छा तो बच्चों बताओ, पानी कहाँ कहाँ से मिलता है?
5: हमारे गांव में दो कुएं हैं, एक तालाब भी है।
3: अच्छा
6: मास्टर जी, हमारे मामा के गांव में नदी बहती है, नदी उसी से पानी लाते हैं।
3: शाबाश, बिल्कुल ठीक।
7: मास्टर जी, वर्षा से तो पानी पानी हो जाता है।
3: हाँ हाँ, ये भी ठीक है।
8: मास्टर जी, हमारे घर में तो नल है।
3: शाबाश। अरे बच्चों, तुम तो बहुत कुछ जानते हो। इन साधनों के अलावा पानी और भी कई स्रोतों से मिलता है, जैसे झरने, झील, तालाब, बावड़ी आदि।
6: मास्टर जी।
3: हाँ हाँ बोलो।
6: क्या हम सागर और बादलों को भी पानी का स्रोत मानेंगे?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा आप सब बच्चे ये लिखें कि पानी का प्रयोग किन किन कामों में करते हैं, ठीक
4: जी मास्टर।
3: लिखो फिर, सब लिखो।
2: सुना आपने दोनों कक्षाओं के अंतर को? पहली में भय का वातावरण था और दूसरी में आश्चर्य, खोज, जिज्ञासा और आनंद का। आज के परिपेक्ष में अध्यापक की यही भूमिका उभर कर आई है। इस भूमिका में बच्चों को सहज समझने और सीखने के अवसर मिलते हैं। शिक्षण के ऐसे अवसरों को अब श्रीमती श्याम की कक्षा में देखें, जिन्होंने अंग्रेजी सीखना बच्चों के लिए एक खेल बना दिया है।
9: दीदी।
10: बोलो मालती।
9: दीदी, मुझे तो बहुत सारे शब्दों के अर्थ समझ में ही नहीं आते।
10: तुम शब्दकोश में अर्थ ढूंढो और उसके अभिप्राय को समझो।
9: हाँ दीदी। अब मैं एक कॉपी में सारे मुश्किल शब्द लिख लूंगी।
10: ठीक।
9: फिर उनके अर्थ भी शब्दकोश में से देखकर लिख लूंगी।
10: हाँ, फिर तो तुम पाठ को सीखने के प्रयास में उन शब्दों का अभिप्राय भी समझ सकोगी।
9: जी।
10: इसके बाद तो तुम्हारे पास अपना ही एक अच्छा खासा शब्दकोश तैयार हो जाएगा।
9: वाह, एकदम मेरा अपना शब्दकोश।
10: हाँ।
2: अब जिस शब्द पर अटको, शब्दकोश देखो और समझो। शब्दकोश सिर्फ बच्चे ही नहीं देखते, शकुंतला श्याम भी देखती हैं। शकुंतला जी की ये शैक्षिक विधि थी जो छात्रों के स्तर को सहजता से ऊपर उठाने में काफी हद तक कामयाब थी। उनकी एक और शैक्षिक विशेषता थी, वो शिक्षण में एक मूलभूत सिद्धांत का प्रयोग करती थीं। वो सिद्धांत था सीखने के प्रक्रम में छात्रों की सक्रिय भागीदारी। वो अपनी कक्षा को एक खोज यात्रा में बदल देने में माहिर थीं। एक अन्य अध्यापिका श्रीमती इंदु बहुत छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं। उनके पढ़ाने का ढंग बहुत रोचक है। इंदु जी का पाठ हमेशा संवाद से शुरू होता है, यानी इंदु जी और बच्चों की बातचीत से। ये है इंदु जी के दिन की शुरुआत।
11: नमस्ते
12: नमस्ते बच्चों, नमस्ते।
13: दीदी ये,
12: अरे वाह, कितने सुंदर फूल हैं ये। प्रवीण, कहाँ से लाए तुम ये फूल?
8: दीदी, ये फूल प्रवीण अपने बगीचे से लाया है।
12: अच्छा
8: दीदी, इसके घर में बहुत सारे फूल लगे हैं।
12: सच? प्रवीण, इन फूलों के क्या क्या नाम है बताओ तो जरा।
13: गुलाब।
12: गुलाब, बिल्कुल ठीक। अच्छा प्रवीण, और कौन कौन से फूल लगे हैं तुम्हारे यहाँ?
11: दीदी मैं बताऊंगी।
12: नहीं नहीं नहीं, सिर्फ प्रवीण बताएगा। हाँ प्रवीण बताओ।
13: गुलाब। गेंदा।
12: हाँ
13: और

0: चमेली,
1: चमेली,
0: सूरजमुखी।
1: सूरजमुखी। शाबाश।
2: तो आइए इंदु जी से ही सुने उनके पाठ तैयार करने का ढंग। हाँ इंदु जी, आप जरा बताइए कि पाठ कैसे तैयार करती हैं।
1: देखिए, मैं बच्चों के अनुभव को ही पाठ का आधार मानती हूँ।
2: जी
1: मेरे छात्र पहली, दूसरी और तीसरी कक्षाओं में पढ़ते हैं। इनमें से कुछ बच्चे, जैसे प्रवीण, बहुत शर्मीले हैं, और मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि प्रवीण को खास तौर पर कक्षा से जोड़ा जाए। आपने सुना ना अभी कि मैंने प्रवीण से ही फूलों के नाम पूछे। उसके बाद बात चली पौधों के हिस्सों के बारे में। स्कूल के आंगन में जाकर हमने देखा कि पौधे के कौन कौन से हिस्से होते हैं। अब सब बच्चे जानते हैं कि पौधों में जड़, तना, टहनी, पत्ते, फूल और फल होते हैं।
2: जी जी,
1: आप जानते हैं हमारी प्रयोगशाला है हमारे स्कूल के आसपास का क्षेत्र।
2: स्कूल के आसपास का क्षेत्र?
1: जी, कभी कभी हम सब घूमने निकलते हैं। मैं बच्चों को दलों में बांट देती हूँ। एक दल रास्ते में दिखे पौधों के नाम लिखता है, एक दल पत्तियों के नमूने जमा करता है, और सबसे छोटे बच्चे रास्ते में दिखे पक्षियों को गिनते हैं।
2: बहुत अच्छे।
1: इस तरह सभी बच्चे कुछ ना कुछ करते हैं। लौटकर हम बच्चों से बात करते हैं कि किस मौसम में कौन से पौधे होते हैं और कौन से पक्षी दिखाई देते हैं। इस तरह एक दिन में बच्चों ने पौधों और पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त की।
2: अरे इंदु जी, आपने तो गणित, वनस्पति शास्त्र और मौसम चक्र सब एक साथ सिखा दिया बच्चों को।
1: और मैंने भी तो सीखा इनसे।
2: जी,
1: आपको मालूम है एक पक्षी है जिसके अंडे बहुत ही खूबसूरत हल्के नीले रंग के होते हैं।
2: हल्के नीले रंग के?
1: हाँ, मुझे ये बच्चों ने दिखाया।
2: अच्छा,
1: मैं जिस इलाके की हूँ ना, वहाँ ये पक्षी नहीं होता। और अब बच्चे एक लिस्ट बना रहे हैं।
2: काहे की लिस्ट?
1: कि किस महीने में कौन से पक्षी दिखते हैं इसकी। छोटे बच्चे पक्षियों के पंख जमा कर रहे हैं और बड़े बच्चे बताते हैं कि वो किस पक्षी का पंख है। बस इस तरह से एक एल्बम बन रही है।
2: ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ, कभी कभी बच्चे पक्षियों के बारे में कहानियां भी सुनाते हैं।
2: इंदु जी, आपका बहुत ही अच्छा ढंग है यूं खेल खेल में पढ़ाने का।
1: देखिए, बच्चों की पसंद अगर मालूम हो ना
2: जी,
1: तो बच्चों को खेल खेल में बहुत कुछ शिक्षा दी जा सकती है।
2: ये तो आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। दोस्तों, इंदु जी की कक्षा के बच्चे इन पाठों को शायद ही भूलेंगे। खुद करके सीखी चीजें हमेशा याद रहती हैं। शिक्षा का ये सहज आनंदपूर्ण ढंग बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति को सहारा देता है। अपने पाठों को जितना हो सके प्रयोगात्मक बनाएं। एक बात का ध्यान हमेशा ध्यान में रहे, बच्चों को उनके आयु वर्ग के अनुरूप ही काम सौंपें और इस काम को चुनौतीपूर्ण बनाएं। 6 से 8 साल तक के बच्चों के लिए अलग अलग पौधों की पत्तियों के आकार और फूलों के रंग ठीक ठीक बता पाना चुनौती भरा है। तो 8 से 10 साल तक के बच्चों की रुचि शायद पक्षियों के घोंसलों के नमूने जमा करने में और कौन से पक्षी कहां घोंसला बनाते हैं ये जानने में होगी। किसी चुनौती को पूरा करना बच्चे के आत्मसम्मान को बहुत पुष्ट बनाता है। एक काम सफलतापूर्वक करने पर बच्चे में अगले उससे और जटिल काम करने का आत्मविश्वास पैदा होता है। अच्छे और सफल अध्यापक इस गुण को हमेशा इस्तेमाल करते पाए गए हैं। अगर आपने गौर किया हो तो पता लगेगा कि ये लोग बच्चों को अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढने में मदद करते हैं। वो बच्चों के अनुभवों को पाठ का आधार बनाते हैं और बच्चों की सक्रिय भागीदारी पाठ में बनाए रखते हैं। वो बच्चों को खुद करके सीखने और अपने अनुभव को बताने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और यही है अच्छी शिक्षा विधि का गुर।
3: सुनथले एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी संबलपुर शास्त्रीय संगीत सुनंतु। आज ए सरोत्पादन करछंती।

0: ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସରୋଦ ବାଦନ ଶୁଣିଲେ ପରିବେଷଣ କଲେ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ରିଜ ନାରାୟଣ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏବଂ ରାତି 10ଟାରେ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ରିଲେ କରି ଶୁଣାଇବୁ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସେ ସମାଚାର ସନ୍ଧ୍ୟା କେ ସାଥ ମୈଁ ମୁନୀଷ ଶର୍ମା। मुख्य समाचार। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू, हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। अमरीका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के

0: नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि यह सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस साल 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से ज्यादा वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अलनीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं ICR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। इस रेलगाड़ी को 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हो गई। ये हवाई संपर्क एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। यह ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्र शासित प्रदेश दमन और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच सीधी हवाई कनेक्टिविटी से इस क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और निवेश को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यात्रियों को अब लंबी सड़क या रेल यात्राओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन के अनुसार जल्द ही नमो एयरपोर्ट से देश भर के अन्य प्रमुख शहरों में हवाई सेवाओं को बढ़ाने की योजना पहले से ही चल रही है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज कहा कि उड़े देश का आम नागरिक

0: योजना के अगले चरण का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक कनेक्टिविटी को बढ़ाना और 4 करोड़ लोगों को विमान यात्रा में सक्षम बनाना है। नई दिल्ली में कार्यशाला में श्री नायडू ने कहा कि सरकार हवाई टिकटों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई उपाय कर रही है।
1: एविएशन एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसको हमें डायनेमिक फेयर प्राइसिंग के तहत हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना है तो एयरलाइंस को वो डायनेमिक प्राइसिंग की सुविधा हमें देनी चाहिए, जो भारत में भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं। कई जगहों पे अगर ऐसा लगता है कि फेयर्स हद से ज्यादा हो रहे हैं तो हमने पाबंदी लगाया कि ये प्राइसिंग को रेगुलेट करेंगे।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को देश भर में व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों, उद्योग और राज्य सरकारों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। डॉक्टर सिंह ने नई दिल्ली में CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के एक वर्षीय प्लेटिनम जयंती समारोह में ये बात कही। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के शासन में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा उन्हें सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थीं। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइक ने इस्तीफा दिया था और बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज पश्चिम बंगाल सहित देशभर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। एक रिपोर्ट।
2: ये मामला उत्तर प्रदेश ATS द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल के कलिकपुर में हरौरा अल जमियतुल इस्लामिया दारुल उलूम में तलाशी के दौरान 40 लाख रुपए नकद और सोने के सिक्के बरामद हुए। जांच के दौरान एक मजबूत वित्तीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए जुटे हुए थे।
3: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी बीजे और छेरा पहरा की पवित्र रस्म पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खिसने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खिसने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भेजा गया है। उड़ीसा सरकार ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उत्सव के बाकी दिनों के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
0: इस बीच गुजरात, झारखंड और दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कच्छ के नववर्ष आषाढ़ी बीज के अवसर पर कच्छी समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आषाढ़ी बीज कच्छी समुदाय की चिरस्थायी सांस्कृतिक विरासत और मजबूत भावना को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवीं या छठी कक्षा में शुरू करना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स में केवल एक अंक की बढ़त हुई और ये 77,187 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 6 अंक गिरकर 24,073 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार के मिड कैप में 0.4% और स्मॉल कैप में 0.1% की गिरावट आई। वहीं अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 9 पैसे गिरकर 96.35 रुपए पर बंद हुआ।
0: अमरीका ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। आज उत्तर में स्थित ठिकानों को निशाना बनाया गया और अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर भी गोलीबारी की गई। जवाब में ईरान ने क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी देशों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमरीका पुलों और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाता है तो ईरान क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे पर व्यापक हमले कर सकता है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक अपने नाम कर लिए हैं। अंडर 23 वर्ग में विश्वनाथ सुरेश और गंगा ने स्वर्ण और वंशज ने रजत पदक अपने नाम किया। अंडर 19 में आदित्य और शुभम राजपूत ने रजत पदक हासिल किए। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 8 विकेट पर 214 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में तथा 22 जुलाई तक राजस्थान में भी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 21 जुलाई तक दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में और अगले 2 दिनों तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में न जाने की सलाह दी है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हुई। हवाई संपर्क एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु हुए शामिल। अमेरिका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. India achieves major milestone bringing over 1 billion citizens under social protection framework. Prime Minister Narendra Modi to flag off country's first hydrogen-powered train from Jind Railway Station in Haryana tomorrow. Direct commercial flight begins between Daman and New Delhi, marking new era of air connectivity. World-renowned Rath Yatra of Lord Jagannath in Odisha's Puri draws lakhs of devotees. US expands strikes into northern Iran, disables ship trying to break naval blockade, Tehran retaliates. 2 Indian men boxers clinch gold while 3 bag silver at Asian Under 19 and Under 23 championships in Jakarta. And in men's cricket, 2nd ODI between India and host England underway in Cardiff. And now the news in detail. India has crossed the 1 billion mark in social protection coverage. In a social media post, Union Labour and Employment Minister, Dr. Mansukh Mandaviya said, India's social protection coverage has expanded from 19% in 2015 to 68.4% in 2026,

0: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए विकसित भारत की कृषि यात्रा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के योगदान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर मांगीलाल जाट। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
1: श्रोताओं, भारत कृषि प्रधान देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत जहां एक तरफ बहुतायत में अनाज या अन्न का उत्पादन करता है, तो दूसरी तरफ भारत की जो खेती है वो वैज्ञानिक और उन्नत है और तकनीकी रूप से सक्षम है। भारत की खेती को इतना उन्नत, तकनीकी रूप से सक्षम और भारत के अन्न भंडारों को लगातार भरने का जो एक बीड़ा उठाते हैं हमारे कृषक उठाते हैं, लेकिन कृषकों के समर्थन और उनकी सहायता के लिए बहुत से संस्थान भी काम करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक ऐसा ही संस्थान है जिसने लगभग 98 वर्षों से देश की सेवा की है, कृषि क्षेत्र को लगातार समृद्ध बनाया है। तो आज हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 98 स्थापना दिवस के अवसर पर और जिस तरह से इस संस्थान ने भारत को कृषि प्रधान

0: धन्यवाद भी देना चाहता हूं आज इस 98वें स्थापना दिवस के मौके पे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 97 साल का ये सफर, क्योंकि 98वां स्थापना दिवस
1: जी
0: आज मनाया है, काफी गौरवशाली रहा है। यदि आप देखें तो हम खाद्यान्न में, हॉर्टिकल्चर में, लाइव स्टॉक सेक्टर में, फिशरीज सेक्टर में हमने जो सफर तय किया है वो बहुत अद्भुत है। हमें आयात पर निर्भर होना होता था, आज हमारे देश में अन्न के भंडार इतने भरे हुए हैं। आज हमारा जो एवर हाईएस्ट रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रोडक्शन जो इस साल का मैं बताऊं आपको, 376.7 मिलियन टन हमारा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन एवर हाईएस्ट, 377 मिलियन टन हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन एवर हाईएस्ट,
1: जी
0: मिल्क का प्रोडक्शन एवर हाईएस्ट, लगभग 20 मिलियन टन के आसपास फिश का प्रोडक्शन एवर हाईएस्ट। ये सारा का सारा जो जितना हुआ है, इसके बैकग्राउंड में विज्ञान, तकनीकी, पॉलिसी, किसानों की मेहनत सारा शामिल है। और ये पूरा इकोसिस्टम के साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूरे देश में काम करता है। ये विश्व का एक सबसे बड़ा नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, हमारे जो 114 संस्थान, हमारे 731 जो कृषि विज्ञान केंद्र है जिनको हम काम करते हैं, हमारे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं 80, उनके साथ में काम करते हैं। तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क है
1: जी
0: और काफी हमने प्रगति की है। और स्पेशली यदि हम आज, क्योंकि आज हमारा स्थापना दिवस है, एक रिफ्लेक्शन पिछले एक साल का यदि मैं करूं तो बहुत बड़ा काम इसमें हुआ है। पिछले एक साल में हमने 19.5 मिलियन टन के लगभग फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ाया है। एक साल में 7 मिलियन टन के लगभग हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाया है, फिशरीज का, लाइव स्टॉक का, और इन सब की यदि वैल्यू मैं करूं तो लगभग 1.25 लाख करोड़ के लगभग एडिशनल वैल्यू मैं बता रहा हूं जो एक साल में हुआ वो है। और इस सब के पीछे अनुसंधान का हाथ है, उसके साथ साथ पॉलिसी और किसान की मेहनत तो है ही है। तो ये गौरवशाली
1: जी
0: इतिहास है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का।
1: बिल्कुल, आपने जैसे कि बात की शुरुआत में ही कि जो भारत की कृषि है, या कृषि को हम अगर पूरी परिभाषा के साथ देखें तो इसमें फिशरीज है, डेयरी है, लाइव स्टॉक है, हर तरह का क्षेत्र शामिल है। और इसमें भारत के जो प्रगति है उसके आपने बहुत पॉजिटिव आंकड़े और एक समृद्ध देश के आंकड़े आपने प्रस्तुत किए। हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि वो कौन से अहम नवाचार, इनोवेशन या रिसर्च या फिर खेती के लिए बड़े पॉलिसीज रही हैं जिन्होंने भारत की खेती की तस्वीर को बदला है इन बीते कुछ वर्षों में, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है।
0: सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है वो है बीज, और क्वालिटी बीज, हाई यील्डिंग सीड, क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड, इसके ऊपर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बहुत काम किया है। हमारा पिछले 10-11 साल का देखें तो 3,000 से ज्यादा क्रॉप वैरायटी जो हमने रिलीज किए हैं उनमें से ज्यादा वैरायटीज क्लाइमेट रेजिलिएंट है। और इसी को यदि आप देखेंगे तो पिछले 10 सालों में चाहे वातावरण की विषम परिस्थितियां रही हो उसके बावजूद भी हमारा प्रोडक्शन घटा नहीं, बढ़ा है। तो क्लाइमेट रेजिलियंस बिल्ड करने में बहुत बड़ी भूमिका है, चाहे क्रॉप्स की हो चाहे हॉर्टिकल्चर की हो। उसके साथ साथ में पशुधन के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो ब्रीडिंग और बाकी मटेरियल, इंप्रूव्ड ब्रीड और उनकी तो बात है ही है, लेकिन पशु का स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके कॉन्टेक्स्ट में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जो वैक्सीन पे काम किया है, हमने क्विकली उसको जो रेस्पॉन्ड किया है, चाहे फुट एंड माउथ डिजीज हो चाहे लंपी स्किन डिजीज हो। और मैम मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि आज हमने फाउंडेशन डे के दौरान एक अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का वैक्सीन रिलीज किया है जो एक अपने आप में ब्रेक थ्रू है। तो उसके कारण से जो एनिमल का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा है। हमारे प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि चाहे मिट्टी हो चाहे पानी हो चाहे वातावरण हो, उसके ऊपर हमने बहुत काम किया है। लैंड डिग्रेडेशन जो वाटर से होता था 125 मिलियन हेक्टेयर वो कम होके 80 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। उसके अलावा सैंड ड्यून स्टेबिलाईजेशन, चाहे आप डेजर्ट की बात करते हैं तो उसपे काम हुआ है। हमने क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेजेज बना के जो काम किया और उसका अप स्केलिंग किया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसका परिणाम देखने को मिल रहा है। हमारी ऊसर भूमि और इस तरीके की जो भूमि थी डिग्रेडेड, उनका रिक्लेमेशन का बहुत बड़ा काम हुआ है। हमने फार्म मैकेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़ा काम किया है और फार्म मैकेनाइजेशन का लेवल काफी बड़ा है, क्योंकि अभी लेबर की अवेलेबिलिटी और टाइमलीनेस ऑफ द ऑपरेशन ये काफी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो मैकेनाइजेशन पे बहुत बड़ा फोकस हमने किया है। लेकिन इसके साथ साथ ये देखेंगे कि टेक्नोलॉजी सिर्फ
1: जी
0: बनाना ही काफी नहीं है, टेक्नोलॉजी को किसान तक पहुंचाना सबसे
1: बिल्कुल
0: इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है।
1: बिल्कुल, अगला सवाल मेरा डॉक्टर मांगेलाल इसी पर ही था कि जैसे ही आपने बहुत से प्रयोगों की

0: बात की, लेकिन प्रयोगशाला से लेकर किसानों तक, खेतों तक उस तकनीक को पहुंचाना ये कितना बड़ा कदम रहा है और कैसे इसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया है संस्थान द्वारा, इस पर भी आप प्रकाश डालें। और क्योंकि हम इन दिनों बहुत कुछ ऐसा भी सुन रहे हैं कि भविष्य में जो बीज की तकनीक है वो बिल्कुल बदलने वाली है और जो प्रयोगशालाओं में इस पर शोध भी हो रहे हैं, और हमने पहले भी देखा है कि जो एक जैविक प्रयोग होते रहे हैं फसलों को लेकर, बीजों को लेकर, ये तकनीकें किसानों तक पहुंचे, धरातल पर इनका क्रियान्वयन हो, तो कैसे संस्थान ने बड़ी भूमिका निभाई है इसमें?
1: बिल्कुल ठीक बात है आपकी। मैं ये बताना चाहता हूं कि डिस्कवरी और डिलीवरी आइसोलेशन में नहीं हो सकती, और हमारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो पूरा फोकस है वह है डिस्कवरी टू डिलीवरी कॉन्टिनम। और डिस्कवरी टू डिलीवरी कॉन्टिनम के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारा फोकस है डिमांड ड्रिवन रिसर्च। हम रिसर्च वो करें जिसकी किसान को जरूरत है, जो किसान मांगता है, और उसी कॉन्टेक्स्ट में वन वे ट्रैफिक नहीं करते हुए ये हम पार्टिसिपेटरी जो काम करते हैं कि टेक्नोलॉजी लैब में बनती है लेकिन उसका पार्टिसिपेटरी वैलिडेशन इवेल्युएशन जो हमारे प्रोग्राम्स हैं केवीकेज के थ्रू एक्सटेंशन के थ्रू उस पर काफी काम करते हैं। और डिलीवरी के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके संज्ञान में होगा कि पिछले साल मई जून में हमने एक विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया। हमारे वैज्ञानिकों की 2000 से ज्यादा 2100 से ज्यादा टीम 15 दिन तक खेतों में थी पूरे देश में 730 लगभग जिलों में, और 15 दिन में हमने लगभग 1,35,00,000 किसानों से सीधा संवाद किया। ना उस संवाद से एक तो है कि टेक्नोलॉजी किसान तक पहुंचाए, लेकिन दूसरा तथ्य उसका यह भी था कि हम किसान की डिमांड साइड को समझें, और उसी को लेते हुए हमने हमारी रिसर्च में क्या हमें नया करना है, किस चीज की डिमांड है वो कर रहे हैं। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लैब टू लैंड का जो फोकस है उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक खेत बचाओ अभियान 1 जून से 30 जून के बीच में चलाया। देश में लगभग 1,650 से ज्यादा टीम उसपे फिर जुटी, और उसमें सिर्फ ICAR की बात नहीं है, हमारा फोकस है एक देश एक कृषि एक टीम, और उसी भावना को ध्यान में रखते हुए हम इस पे काम कर रहे हैं। तो हम कृषि विश्वविद्यालय स्टेट्स का जो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट्स का जो अमला है वो भारत सरकार के डिपार्टमेंट ICAR हमारे इंस्टीट्यूशंस सभी लोगों को यूनिवर्सिटीज को मिला के और इसके ऊपर काम किया, क्योंकि इस साल विशेष परिस्थितियां रही है, और उसमें खेत बचाओ में यही है कि फर्टिलाइजर का जो अंधाधुंध उपयोग हो रहा है उसको कैसे ठीक किए, बैलेंस कैसे करें, तो उस पे जागरूकता, प्राकृतिक खेती पे देश का बहुत बड़ा एक फोकस है तो उसकी जानकारी किसानों को वो पहुंचाएं। उसके अलावा जो एलनीनो का इफेक्ट है तो कौन सा वैरायटीज, कौन सा सीड, कौन सी क्रॉप कहां पे, इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए वो हम उसके अलावा ये भी कर रहे हैं कि जैसे मैं एलनीनो की बात करूं तो हमने 315 जिले जो वल्नरेबल देश के हैं उनके लिए कंटिजेंसी प्लान बना के सारे स्टेट्स के राज्यों के साथ में डिस्कशन करके हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको पहुंचाया है। तो हम एक्सटेंशन की दिशा में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए हमारा एक पूरा एक्सटेंशन का डिवीजन है।
0: क्योंकि आपने एलनीनो की चर्चा की, उसी से मेरे मन में सवाल आया कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर एक चुनौती तो ये रहेगी पूरी दुनिया के सामने कि दूध या खाद्यान्न की आपूर्ति बढ़ती हुई जनसंख्या के सामने रहे, हमारे देश में भी एक इतनी बड़ी जनसंख्या की पेट भरने के लिए दुग्ध उत्पादन की एक बहुत बड़ी टारगेट रहेगा, तो ऐसे में जो फसलें और जलवायु परिवर्तन भी एक चुनौती है, तो क्लाइमेट रेजिलियंट फसलें हों, ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो, ज्यादा से ज्यादा दूध का उत्पादन हो, इन सब की चुनौतियों को लेकर क्या लक्ष्य रखता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपने सामने?
1: मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जितना भी हमारा फोकस है ये क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर ही है, और जो आज भी जैसे हमने वैरायटीज रिलीज की है तो 94% वैरायटीज क्लाइमेट रेजिलियंट वैरायटीज है। हमारा सारा का सारा फोकस क्लाइमेट रेजिलियंस बिल्ड करने पे है, और उसी का परिणाम है कि हमारा प्रोडक्शन क्लाइमेट की रिस्क होते हुए भी बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। लेकिन मैं क्रॉप वैरायटीज की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे लाइव स्टॉक की ब्रीड हो, चाहे फिश की ब्रीड हो, सभी में क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर हमारा पूरा फोकस है। नाउ ये तो हो गया ब्रीडिंग वैरायटीज ब्रीड्स की बात, लेकिन हमारा बहुत बड़ा फोकस क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर पे है। यदि आप देखें तो पिछले 15-20 साल में यदि रेनफेड एग्रीकल्चर जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है क्लाइमेट चेंज के कारण से, जहां रेनफॉल की अनसर्टेनिटी होती है, डिग्रेडेड लैंड होती है, वहां पे हमने प्रोडक्टिविटी गेन्स इवन इरिगेटेड एरिया की तुलना में, मैं कंपेरेटिव गेन्स की बात कर रहा हूं, वो ज्यादा किए हैं। तो हमारी क्लाइमेट रेजिलियंस बढ़ी है, क्योंकि रेनफेड एरियाज में वाटर कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो हमारे सारे एफर्ट हैं कि सोयल का इरोजन कम हो, वाटर का कंजर्वेशन हो, सोयल हेल्थ इंप्रूव हो, अभी मृदा का स्वास्थ्य सबसे बड़ा एक इश्यू है।
0: और आखिर में आपसे मैं यही समझना चाहूंगा डॉक्टर मांगीलाल, सस्टेनेबल खेती के मॉडल को लेकर भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसमें हम आपसे थोड़ी सी चर्चा ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी करना चाहेंगे, जिसमें जो खादों का प्रयोग है वो सस्टेनेबल तरीके से हो और मिट्टी भी स्वस्थ रहे। तो ऐसे में ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग, इसको लेकर भी कितने प्रयास हैं और कैसे इस विषय को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है संस्थान की ओर से?
1: फूड इज मेडिसिन, उस लाइन पे हम काम कर रहे हैं। और हाल ही में हमने ICAR और ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मिलकर एक जॉइंट मिशन लॉन्च किया है, सेहत स्टैंड फॉर साइंस एक्सलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सेहत है। और उसमें जो हमारी बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज जो न्यूट्रिशियस होती है उस पर फोकस है, उसका वो क्लिनिकल ट्रायल करके उसको हम आगे कैसे लेके जाएं। लेकिन उसके अलावा जो छोटे किसान है, हमारा जोत छोटा है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जिसमें सिर्फ फसल ही नहीं हो, उसमें हॉर्टिकल्चर भी हो, उसमें लाइव स्टॉक भी हो, उसमें सेकेंडरी एग्रीकल्चर की एंटरप्राइजेज भी हो, सारी होगी, तो एक तो किसान की आमदनी बढ़ेगी, जो क्लाइमेटिक शॉक्स हैं उनसे रेजिलियंस बढ़ेगा, लेकिन ये वो डाइवर्सिफाइड फूड होगा तो सस्टेनेबल एंड हेल्थी डाइट जो कंट्रीब्यूट कर देगा तो वो ह्यूमन हेल्थ में भी कंट्रीब्यूट करेगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में जो फूड रिलेटेड हेल्थ इश्यूज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज के बहुत ज्यादा हैं। एक तो फूड और एक हमारी लाइफ स्टाइल, वो दोनों मिलकर कॉम्प्लेक्स हो रही है। तो हम एग्रीकल्चर को हेल्थ के साथ में कनेक्ट करके आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें ये सारी की सारी चीजें आती है। और इन सब चीजों के पीछे यदि हमारी मृदा स्वस्थ रहेगी, सोयल हेल्थ हमारा फाउंडेशन है, तो हमारे पौधे स्वस्थ रहेंगे, पौधे स्वस्थ रहेंगे तो उसमें जो दाने आएंगे उसको खाके मानव स्वस्थ रहेगा, उसका चारा खाके पशु स्वस्थ रहेगा, और यदि सारा स्वस्थ रहेगा तो हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहेगा। और इसलिए भारत सरकार का एक कमीशन है वन हेल्थ, तो ये सारा वन हेल्थ की तरफ कंट्रीब्यूट करता है और हम इसी चीज को लेके आगे बढ़ रहे हैं।
0: जी बहुत धन्यवाद डॉक्टर मांगीलाल जाट, आप कार्यक्रम में जुड़े,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे विकसित भारत की कृषि यात्रा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के योगदान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर मांगीलाल जाट। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। Countrywide.

0: यही तो मोर परम आराध्य पितृदेव ब्रह्मा त्रैलोक्यनाथ विष्णु सहित कौन से एक गुरुतर आलोचन बोध हुए निमग्न अंतराल रही आग शुणे आउ एक अपूर्व लीला अवलोकन करार अभिलाष जगिला प्रभु नारायण नारायण नारायण।
1: हे त्रैलोकनाथ विष्णु, बराह अवतार धारण करी प्रलय पयोधि जलरु बसुमतीकु तुमि उद्धार कर ओ मते पुणि चराचर सृष्टि करिबाकु कहिल। तुम निर्दोषरे मु पुणि सृष्टि कलि। तुमर माया तो समस्तंकु अगोचर विष्णु। ए महाप्रलयर समस्त प्रसंग वर्णना करी मोर समस्त संशय दूर कर ओ सचराचर जीवकुळंक मुख्यर उपाय कण कुह प्रभु।
2: हे वेदपति, ए संसारर तुमे सृष्टिकर्ता, पुणि तुमे त्रिकालदर्शी, तुमको कौन अगोचर? तथापि स्नेहर आतिशच्चरे मो तुंडर जेबे शुणिबाकु चाहुछ तेबे कहुची शुणा।

0: धर्य धर इंद्र दुम्न घेन हे सांत्वना शोक त्याग कर मनु जाऊछि मु श्रीहरिंक पासे पचारिबि तांकु एही कुटर कारण।
1: जाओ हे देवर्षि तुमे न फेरिबा जाय अपेक्षा रे बसिथिबु आमे दुहे एही नीलगिरि तळे शोकातुर अश्रु नयन।
0: नारायण नारायण नारायण।

वृद्ध एक प्रवेशिले विश्वकर्मा बेसरे वृद्ध एक प्रवेशिले विश्वकर्मा बेसरे कहिले कौन कहिले पंदर दिन।

तन्मन धन कार्यक्रम शुणिबे डॉक्टर दिव्यज्योति राउत साक्षात्कार अपराह्न तीनटे किसान संप्रदायर सामाजिक और सांस्कृतिक जीवनधारा उपरे पर्यवेक्षित किसान भाषार विशेष कार्यक्रम माका पुपु झका झका एथिरे चाष व्यवसाय पृथ्वी पोषा ए संपर्क में जगदीश प्रसाद धान सहित कथबार्ता शुणिबे एथिला आगामी प्रसारित होगा केतक कार्यक्रम संपर्क में सूचना आकाशवाणी संबलपुर वर्तमान समय राति 11:23:20 एठी शेष करुछु आजर अधिवेशन श्रोता मानू अभिवादन जन आगामी अधिवेशन आरंभ करूँ सका 5:53 आजपाई विदाय नौ जय हिंद।